FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, हिंदी में समाचार के लिए अब आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला

0: की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ सुनिएगा। आज सुनिए भाग 238। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूबदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। 7:00 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार सुनिएगा और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी सुनिएगा। लेखक है मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 8:00 राजकुमार पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और आज रात 9:30 पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। इसके पहले 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष 35वीं कड़ी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:00 समाचार का वक्त है 2:15 से और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 हेलो सहेली कार्यक्रम होगा और 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी।

कहानी सुनिए सुनहरी पूछ वाला अमर पंछी। लेखक है मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का है। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। छह बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा और 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिएगा। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर अनमोल यादें गुलदस्ता सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 8:00 हवा महल में सुनिए प्रहसन, पड़ोसी का कैमरा। लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव और निर्देशक हैं भगवान साहू। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था झरोखा, आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

सिंहासन पर श्री राम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम तम संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ। हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में फिर उपस्थित हैं और पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी, नमस्कार। रोनू दा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की बांसुरी की और अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तालीम के बारे में।
2: हाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, गुरु इति ज्ञान। तो ये एक बड़ी अजीब सी शुरुआत है। मैं बचपन में वैसे तो बहुत शांत था, माता जी बोलती थी कि सबसे शांत भाइयों में यही था, मगर एक गलती मुझसे ऐसी हो गई
1: जी,
2: वहीं से मैं बांसुरी बजाने लगा। वाराणसी में मेरा जन्म हुआ
1: जी जी,
2: 1963 में। तो जब मैं 6 साल का था तो हम लोग सारनाथ करके एक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है
1: जी,
2: और बड़ी आध्यात्मिक जगह है। वहां पे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे
1: जी,
2: और पन्ना बाबू की उन्होंने सेवा भी बहुत की, और पिताजी बहुत बड़े पेंटर थे मगर शौकिया बांसुरी बजाते थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत बड़े थे।
1: अच्छा
2: जी। तो वो जो बांसुरियां हम लोग अभी बहुत संभाल के रखते थे, उस जमाने में कोई बस खाट पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-6 बांसुरियां, कोई खिलौना तो था नहीं मेरे पास, तो

0: बांसुरियों से खेलते खेलते मैंने 5-6 बांसुरियां तोड़ डाली बस। तो शाम को आके लाल पीले हो गए एकदम वो। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं, इतनी मार मुझे पड़ेगी आज की। मैं तैयार हो गया सजा पाने के लिए,
1: जी
0: मगर कोई सजा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतने ही घंटे रोज रियाज करना पड़ेगा,
1: अरे
0: यही तुम्हारी सजा है।
1: गजब।
0: और मैं था बड़ा ईमानदार बचपन से, मैं झूठ कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता हूं
1: जी
0: अगर मजबूरी ना हो तो। तो कहते हैं ना, सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, एक झूठ के लिए यहां 100 झूठ बोलना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के लिए सिवा कुछ मत
1: कुछ मत
0: बोलो।
1: बोलो।
0: तो ये लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं कविता भी लिखता हूं। तो वो जो मैं पिताजी से सीखने लगा और 6-6 घंटे रियाज करने लगा, तो मैं बांसुरी वादक ही बन गया। उसके बाद 1973 में हम लोग बंबई आ गए। बंबई आने का कारण कुछ बनारस छोड़ना था ऐसा नहीं, होम्योपैथी का इतना डिमांड बनारस में था नहीं। तो यहां डॉक्टर मुखर्जी थे, वो
1: जी
0: पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने बंबई बुलवा लिया। बंबई आने के बाद हम लोग ऐसे आदमी से मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि मैं उनको मिला हूं। मेरे उम्र के शायद ही कोई होंगे जो उनसे मिले होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को भी कई, मतलब कर 30-35 साल हो गए।
1: जी
0: उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान
1: जी
0: सम्राट। अब वो तान सम्राट कोई पद्मश्री पद्म भूषण नहीं है, तान सम्राट ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि इनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। सारे उस्ताद चौबारे में बैठते थे और उनकी महफिल लगती थी, उसमें एक एक करके सब गाते थे और उसके बाद एक दूसरे को एक एक नाम देते थे। अरे ये तो धीरे-धीरे का बादशाह है, अरे इसके तो खटके का जवाब नहीं, अरे इसके तो साल लगाने का अंदाज अलग है। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तान जब गाए, तो सारे अमीर खान साहब और ये लोग सब मिलके बोले, अरे ये तो तान का सम्राट है ये।
1: गजब।
0: तो तान सम्राट से मैं मिला। आप सोचिए 74 में, 11 साल की मेरी उम्र, और उनकी बंदिश आज तक मुझे याद है,
1: जी
0: जिसको राशिद भाई भी गाते थे,
1: जी
0: मगर जो आज भी YouTube में है, कोई सुने तो बोले कि ऐसा नहीं गाया कोई।
1: जी कौन
0: मियां की
1: सी?
0: थोड़ी पार करो तुम अब मोरी नैया, हजरत निजामुद्दीन औलिया।
1: तो यहां पर सुनाएंगे क्या थोड़ी
0: मैं
1: सी?
0: जरूर सुनाऊंगा।
1: जी।

0: क्योंकि मियाँ की थोड़ी है ना, तो
1: जी
0: जाते वक्त पंचम नहीं लगेगा, गामा धा नहीं जाने धाबा माधा बाबा घरे था, ऐसा इसका चलन है। एक बदलाव मैंने इसमें किया है, खां साहब गाते थे खाली से शुरू करते थे, मैं पार उसको मैं सम से लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उसमें सम दिखता है, तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मियाँ की तोड़ी की सीडी है उसमें मैंने सम से लिया है पार।

0: गाना भी इतना मुश्किल है
1: जी।
0: तो गंज शखर के लाड लडैया में उन्होंने जो एक तान ली, तब से मुझे तीन प्रकार के तान वो गाते थे, वो जो मुझे याद है, एक तलवार कट तान, एक जिलेबी तान जिसमें बहुत हसीन थे देखने में
1: जी।
0: उनकी तस्वीर भी पिताजी ने बनाई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि इतना सुंदर गायक मैंने तो नहीं देखा
1: जी जी।
0: और मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे
1: जी।
0: लता जी ने उनका गाना सुनना चाहती थी, तो लता जी ने उस जमाने में 500 रुपए एडवांस दिए थे।
1: गजब।
0: वो एडवांस लेके खान साहब चले गए दिल्ली।
1: अच्छा।
0: प्रोग्राम गाया ही नहीं।
1: अच्छा।
0: और पिताजी से कहा कि वहां पे किसी का डेथ हो गया है।
1: हाँ।
0: आप, मैं जा रहा हूं, मैं गाऊंगा नहीं।
1: हाँ।
0: आप अपने बच्चों को लेके लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के वहां चले जाइए, उनके जैसा गुनी कोई नहीं है आज।
1: जी जी।
0: मैं भी नहीं, मैं तो गा लेता हूं।
1: हाँ।

0: वो जानते भी हैं। लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के वहां, हम लोग बाबा भगवान दास जी के आश्रम में माटुंगा में, उन बाबा के वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का कोई
1: भेद नहीं,
0: कोई भेद ही नहीं, बस संगीत ही संगीत उनको अच्छा लगता था। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे हिंदुओं में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले बाल आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये चार आश्रम बताए गए, मतलब चार जीवन के चार पहलू। तो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था, घर में नहीं रहते थे, वही बाबा के वहां रहते थे।
1: अच्छा,
0: वहां जाके उनके दर्शन किए, मेरी दीदी उनसे गाना सीखने लगी, मैं भी गाना सीखने लगा। मगर जब भी कोई बंदिश हो मुझे बताएं, मैं उस बंदिश को गाता भी था और बांसुरी में और अच्छा मैं उसको निकालता था।
1: गजब।
0: एक दिन वो पिताजी से बोले कि भानु दादा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि इसको फ्रेम में करके दीवार में रख के। तो पिताजी को बोले कि आपका बेटा गाता तो ठीक ठाक है, मगर ये बांसुरी वादक बनेगा। तो पिताजी बोले किसके पास ले जाना चाहिए। तो उस जमाने में हरिजी का इतना नाम नहीं हुआ था। 1976 में मैं 13 साल का हो गया। बोले यहीं पे सायन में फिल्म डिवीजन में काम करते हैं पंडित विजय राघव राव, उनसे गुणी बांसुरी वादक कोई नहीं है। गुरु बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है, गुरु ज्ञानी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे मैं चला गया और बांसुरी की शिक्षा मेरी होने लगी। वो भी पन्नालाल घोष जी को देख के ही बांसुरी शुरू किए थे।
1: जी जी।
0: तो तीव्र मध्यम के लिए छोटी उंगली की इस्तेमाल वो भी आवश्यकता वो करते थे। जो हरि जी का टेक्निक है वो तो भोलानाथ जी वाला टेक्निक है, तो उसमें छोटी उंगली की इस्तेमाल नहीं है, वो शहनाई वाली टेक्निक है।
1: जी जी।
0: और ये जो मैं बजाता हूँ ये पन्नालाल घोष वाली टेक्निक है।
1: जी।
0: मेरे गुरु जी ने एक दिन रात नहीं जा रहे थे, घर से निकाल दिया मुझे।
1: अच्छा।
0: बोले अभी ये बजेगा तो ही आना। और मैंने 40 दिन का चिल्ला किया।
1: गजब।
0: बस 40 दिन एक ही आसन में बैठ के 4 घंटे रोज, जिसको 40 का चिल्ला कहते हैं, वो चिल्ला मारा मैंने। उंगलियां फूल जाती थी तीव्र मध्यम सानी दा बाबा दानी मैं बजा के सुना रहा हूँ।
1: जी, जी, जी।
0: आपको लगेगा कि ये जो कई लोग प्यार से इसको कहानी उंगली भी कहते हैं, उसका स्पीड आप तर्जनी जो है हमारा और मध्यमा जो है उतना स्पीड आपको उसमें दिखाई पड़ेगा।
1: जी जी।
0: देखिए
1: जी, सुनाए सर।
0: सानी दा पामा मा, मैं कानी उंगली से बजा रहा हूं तो उसका स्पीड देखिए।

0: जो यमन राग, राग श्री, ऐसे राग अगर आप छोटी उंगली कानी उंगली का इस्तेमाल लिटिल फिंगर का नहीं कर रहे तो कैसे बजेगा? मैं तो लिमिटेशन मानता हूं इसको।
1: जी जी जी,
0: जो इसका इस्तेमाल नहीं करते उनके वादन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है।
1: तो ये जो आपने बजा के दिखाया, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो बारीकियां पंडित जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं आंखों से, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सचमुच ये बाकायदा कहीं अंकित करने लायक है।
0: मैं गुरु के बारे में एक बात और कहूं
1: जी,
0: मेरे गुरु जी इतने महान थे मगर वो पहले थे कर्नाटिक म्यूजिशियन
1: जी,
0: कर्नाटिक फ्लूट बजाते थे और डांसर थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखा वो पंडित रविशंकर जी से सीखा।
1: अच्छा।
0: हालांकि रविशंकर जी के उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क था। 2011 में मेरे गुरुजी गुजर गए, 2012 में रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी बड़े गुरुजी मैं बोलता हूं, वो जब मेरे गुरुजी से पूछे कि मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं एशियाड के लिए, इंदिरा गांधी जी के कहने में अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, इसमें मेरी बांसुरी बजी हुई है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, वो मुझे रानेंद्रपुरा नाम से बोलते थे और रानू बोलते थे।
1: जी जी।
0: उसका दिमाग बड़ा तेज है, उसको ले लीजिए आप इसमें। तो मैं उस गाने में जब बजाया तो मैं ना नोटेशन बहुत फास्ट लिखता था बचपन से, एकदम स्टेनो की तरह, स्टेनोग्राफर जैसे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो वो बोले कि विजय, मेरे गुरुजी का नाम लेकर बोले, सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, ये लड़का मुझे दे दो।
1: अरे गजब।
0: ये लड़का आप मुझे दे दो।
1: हाँ हाँ।
0: तो गुरुजी बोले आपका ही है, बोले इसको दिल्ली भेजो। उदय शंकर जी जो रविशंकर जी के बड़े भाई थे,
1: जी जी,
0: उनके ऊपर मैं एक फेस्टिवल कर रहा, उदय उत्सव। उदय उत्सव में मैं बजाने चला गया। तब से पंडित रविशंकर जी के जितने एल्बम हुए सब मैंने बजाया, फिर उनसे डायरेक्ट भी मैंने कुछ राग सीखे, जैसे परमेश्वरी, तिलक श्याम और

0: राग रसिया,
1: जी
0: मतलब यहां तक कि नट भैरव में क्या सोचना चाहिए। नट भैरव कई लोगों को मालूम भी नहीं कि ये रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है, ये साउथ का एक राग है सरसांगी।
1: जी जी
0: नट भैरव ही है वो
1: जी।
0: उसको रूप दे दिया रवि गुरु जी ने कि ये सादा ने सरे रे गा रे, यहाँ नट है ना
1: जी जी, जी।
0: सरे रे गा गा मा पा रे, रे गा मा पा गा मा रे नी रे नी दा, सा को छोड़ के नी सर ने ने, मैं बजा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसी बात है। ये नट भैरव है।
1: वाह पंडित जी, अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज की इस कड़ी को यहीं समेट रहे हैं। अनुमति लेते हैं श्रोताओं से, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपने खास अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार जी की तमाम फिल्में हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म नौशेरवाने आदिल से।

1957 में रिलीज हुई फिल्म नौशेरवाने आदिल, जिसमें सोहराब मोदी के साथ अभिनेता राजकुमार और माला सिन्हा नजर आए, बहुत मशहूर फिल्म। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पंचायत का ये गाना।

0: फिल्म पंचायत का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील नोमानी का कलाम था और इकबाल कुरैशी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना

0: अलंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों के स्वरों में पैगाम फिल्म का ये गाना, प्रदीप के बोल हैं सी रामचंद्र का संगीत।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1961 में रिलीज हुई फिल्म घराना का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत।
1: वाले

आइए अब सुनते हैं फिल्म अर्धांगिनी का गाना। 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ राजकुमार कैप्टन यानी पायलट की भूमिका में नजर आए थे। और इस गीत को जो आप सुनवा रहे हैं, ये लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत वसंत देसाई का है।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे उजाला फिल्म का ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन की धुन। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

FM के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्ते रोहतास। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं, कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र हैं। इस सुविचार के बाद श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का इतिहास।

श्रोताओं, आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई 1972 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। और आज ही के दिन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी।

3 जुलाई 2005 में आज ही के दिन महेश भूपति और मेरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था और आज ही के दिन 2006 में कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी। स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद भी आज ही के दिन जताई थी।

श्रोताओं, अब आइए जानते हैं आज के दिन जन्मे लोगों के बारे में। 3 जुलाई 1969 में दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ था, जो महावीर चक्र से सम्मानित वीर राष्ट्रीय सैनिक थे और ये भारतीय नागरिक थे। 3 जुलाई 1979 में आरती सिंह राव का जन्म हुआ था, जो भारतीय निशानेबाज हैं। और आज ही के दिन 1941 में अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ था, जो मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक थे। और आज ही के दिन 1897 में हंसा मेहता का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थीं।

श्रोताओं, आइए जानते हैं आज के दिन जिन लोगों की पुण्यतिथि है। 3 जुलाई 2020 में आज ही के दिन सरोज खान का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थी। और 3 जुलाई 1996 में राजकुमार का निधन हुआ था, जो भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता थे। 1999 में आज ही के दिन मनोज कुमार पांडे का भी निधन हुआ था, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक थे। आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से।

मुकेश की आवाज़ में आशिक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत था। श्रोताओं, अब आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार जिलाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़कों की वर्तमान स्थिति, उनके रखरखाव मरम्मत कार्यों तथा यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि अपने अपने कार्यक्षेत्र की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें। जहां कहीं भी छोटे या बड़े गड्ढे पाए जाएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब भरने की कार्यवाही

सुनिश्चित करें। बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रमगंज क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर जल्द ही भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से हाई रिस्ट्रिक्शन बैरियर लगाए जाएंगे। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा तथा ग्रामीण सड़कों को क्षति पहुंचाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनुरक्षित सभी सड़कों की अद्यतन सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं। सूची के आधार पर सड़कों की स्थिति का समुचित आकलन कर आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क मरम्मत एवं रख रखाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा प्रगति रिपोर्ट समय समय पर उपलब्ध कराई जाए। श्रोताओं, अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज सुबह सूर्योदय हुआ सुबह 5:08 पर और सूर्यास्त होगा 6:44 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री। दिन में धूप निकलेगी, साथ ही साथ बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बिजली गिरने तेज वर्षा की भी संभावना है। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा गीत। आस का पंछी फिल्म से।

आज का पंछी फिल्म से ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हजरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। श्रोताओं, अब आइए जानते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। आज दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अमरनाथ यात्रा आज से, हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ। आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु 3,888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को जम्मू के भगवती बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। जत्थे में 4,822 तीर्थयात्री शामिल थे, जो 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में रवाना हुए। श्रद्धालुओं का उत्साह और सुरक्षा इंतजाम दोनों पिछले साल से ज़्यादा है, हालांकि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। 2 दिन में बालटाल बेस कैंप से गुफा तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक दोनों रूट पर तेज बारिश की आशंका जताई है। पहले जब भी बारिश हुई यात्रा रोकनी पड़ी, क्योंकि बालटाल रूट पर बरारी से रेल पथरी तक भूस्खलन जोन है। इस बार मौसम की सूचना दोनों बेस कैंप पर अनाउंसमेंट कर दी जा रही है। बालटाल से गुफा तक 12 जगह वाटरप्रूफ डोम शेल्टर शेड बनाए गए हैं। संगम और पवित्र गुफा के पास भी बड़े शेल्टर है। यह सुविधा इमरजेंसी के लिए है। यात्रियों को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटना होगा। हर 1-2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ भी लगाए गए हैं। डोमेल रूट पर 4 जगह स्क्रीन पर मौसम का अपडेट मिलेगा। दैनिक भास्कर की ही दूसरी सुर्खी है, राज्य में वीबीजी रामजी शुरू, 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता। बिहार में मनरेगा का स्थान विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम 2025 यानी कि वीबीजी रामजी ने ले लिया। गुरुवार को अधिवेशन भवन में समारोह के साथ इसकी शुरुआत की गई। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जवाबदेही को लेकर है। अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। इस भत्ते की राशि को 30 दिनों के भीतर जिम्मेदार अधिकारी या एजेंसी से वसूला जाएगा। समारोह के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये बातें कही। इस योजना के तहत अकुशल मजदूरों को दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना कर दिया गया है। नई व्यवस्था में कामगारों को साल में 100 दिन के बजाय अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित।

राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अधीन राज्य उच्च पथ और पुलों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया था। इस सिलसिले में अब तक 50 सड़कें चिन्हित की गई है। सड़कों के सर्वे का काम अब भी चल रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से टोल टैक्स तय करेंगे। अगर कोई सड़क 5.5 मीटर से कम चौड़ी है तो उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। शहर के भीतर वाली सड़क पर नहीं लगेगा कोई टोल टैक्स। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर राज्य उच्च पथ किसी शहर के भीतर स्थित है तो उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। पटना को इसका फायदा यह है कि शहर के भीतर स्थित जो सड़क है वह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड श्रेणी की है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को टोल टैक्स की परिधि से अलग रखा गया है। दैनिक जागरण की ही सुर्खी है, प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, छिटपुट वर्षा संग उमस का प्रभाव। प्रदेश में जून के बाद अब जुलाई में भी दक्षिण पश्चिम मानसून का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। राज्य के अधिकतर भागों में वर्षा की स्थिति सामान्य से कम रहने के साथ तापमान अधिक होने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। खेती किसानी के साथ आम जनजीवन पर मौसम की दोहरी मार पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 5 से 7 जुलाई के बीच मौसम में बदलाव के आसार हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नीट जेई में जुड़ सकते हैं 12वीं के 50% अंक। नीट यूजी और जेई परीक्षाओं के स्कोर पर आधारित मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिलों की मेरिट में अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंक भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज देने का सुझाव दिया है। हालांकि अंतिम प्रस्ताव अभी सरकार को सौंपा जाना बाकी है। सूत्रों के अनुसार 2025 में गठित शिक्षा मंत्रालय की 9 सदस्यीय समिति परीक्षा प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगी। इनमें सबसे अहम है कि नीट और जेई परीक्षा के स्कोर पर आधारित प्रवेश प्रक्रिया में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों को 50% वेटेज दिया जा सकता है। अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिले नीट जेई परीक्षा के स्कोर के आधार पर होते हैं। पैनल की अंतिम रिपोर्ट आने वाले हफ्तों में सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। और श्रोताओं, अब आइए जानते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं अर्थ जगत का हाल। ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं, बस 1800 रुपये दें। अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभी तक ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसने पुरानी पीएफ योजना 1952 की जगह ले ली है। इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है। यानी अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपये का 12% यानी कि 1800 रुपये ही ईपीएफ अंशदान लेना जरूरी है। 1800 रुपये से अधिक का योगदान अब तभी जारी रह सकता है जब कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे। और श्रोताओं, भाई ये जानते हैं खेल जगत का हाल। अगले 6 महीने में भारत में होंगे 11 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। भारत में अगले 6 महीने में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप समेत 11 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले जाने हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 17 अगस्त से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर खेली जाएगी, जहाँ इस साल जनवरी में इंडिया ओपन के दौरान स्वच्छता और रख रखाव से जुड़े मसलों को लेकर विदेशी खिलाड़ियों ने काफ़ी आलोचना की थी। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सुविधाएं शीर्ष स्तर की हो। मंत्रालय तैयारियों पर नज़र रखे हुए है और हम नकारात्मक धारणा को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और श्रोताओं, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का यह अंक यहीं सम्पन्न होता है। कल एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।

0: अभी हम सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको लेकर चलते हैं समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय

और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम

0: 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई

0: राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं और श्रोता लीजिए पेश है देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शकील वदायूनी का यह लिखा गीत हम सुन रहे थे, नौशाद के संगीत निर्देशन में लीडर फिल्म से ये देशभक्ति गीत। और श्रोताओं, इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है हमारा अगला कार्यक्रम, फरमाइशी पत्रों पर आधारित पसंद आपकी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आपके भेजे हुए पत्रों को हमने शामिल कर लिया है। और श्रोताओं, आज एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पत्र आए हैं फरमाइशी पत्रों में, वो सबसे ज़्यादा किसी भी गीत के लिए फरमाइशी पत्र आए हैं। आपने अपनी पसंद के गीत वाले पत्र बहुत ही कम आए हैं, तो चलिए जो आपके पसंद के हैं उसे तो हम सुनाएंगे ही, और जो किसी भी गीत के लिए है उसे हम अपनी पसंद से आज आपको सुनवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पत्र है हमें जो मिला है, मेरा गांव मेरा देश फिल्म के लिए। ये पत्र हमें भेजा है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा ने। पुराना शहर दाऊदनगर से ये हमारे श्रोता हैं सैयद सरफराज अहमद, खुर्शीद अहमद और राजेंद्र कुमार। आप सबों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत। तो चलिए आप सबों को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। एक और पत्र शामिल कर लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम नाद, ज़िला रोहतास और इनका थाना है चोर। और आप सभी श्रोताओं के नाम हैं मुन्नी देवी, सगिया देवी, छठिया देवी, लौंगी देवी, लैचिया देवी, बटरी कुमारी। तो इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है तो आपको भी हम सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनें।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे मेरा गांव मेरा देश फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और श्रोताओं आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा, नेह नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला ने कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आपको हम सुनवा रहे हैं डर फिल्म का खूबसूरत गीत। और ऐसे ही एक और पत्र हमें मिला है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा के श्रोताओं का। आप हैं कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी का। इन्होंने भी लिखा है कि अपनी पसंद से कोई भी गीत सुना दे। तो चलिए खूबसूरत गीत सुनिए फिल्म डर से उदित नारायण की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
1: सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का पसंद आपकी कार्यक्रम में और श्रोताओं भाई सुनते हैं अगला गीत आप सबों की पसंद पर थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से ये हमारे श्रोता है मुन्ना भाई मंसूरी नजमुन निशा सद्दाम मंसूरी नगमानिशा लाल बाबू

सिमरन अली अरबाज मंसूरी सैफ अली शबाना और शहबाज आप सबों ने सुनना चाहा है सरगम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। एक और पत्र ले लेते हैं, इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबीहा निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय प्रीति राय और नवनीत राय। तो चलिए आप सभी सुनिए सरगम फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम श्रोताओं सुन रहे थे सरगम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत देवदास फिल्म से, और ये हमारे किसी श्रोताओं ने पसंद नहीं किया है, ये हमारी पसंद है। और आप सबों ने, ये जो श्रोता है नरहन स्टेट से, लिखा है कि अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दे। तो आप हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या और विनीता मिश्रा, साथ में स्नेह लता जैन। तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं देवदास फिल्म का गीत। और एक और पत्र है नाज बंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, इशरत अकरम, रूबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख और कलेर बिहार से हैं आसिफ खान, निखत प्रवीण, नूर महल महसूल से हैं हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अभिया नाज, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। आप सबों ने भी लिखा है कि आप अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल करें। तो चलिए आप सबों को सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म देवदास से ये खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे देवदास फिल्म का एक खूबसूरत गीत। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए चलते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और उच्च स्वास्थ्य संस्थान में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अनावश्यक रेफरल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने अस्पतालों में नर्सों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने और उन्हें यथासंभव उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करने के भी निर्देश

0: दिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पटना के अधिवेशन भवन में योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि अकुशल मजदूरों का मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मनरेगा की अव्यवस्थाओं और खामियों को दूर करने के मकसद से विकसित भारत जी रामजी योजना को लाया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा।
1: जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, ये तमाम चीजों को खत्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था, इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा।
0: इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राजगीर में दो युवकों की हत्या और आरा में भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की जानकारी दी। श्री पासवान ने इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपए की मांग की है। श्री तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के लिए विशेष बजट के आवंटन से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा नदी का कायाकल्प एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार सहयोग से यह महती कार्य किया जा सकता है। गंगा नदी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड टास्क फोर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाटिल ने यह बात कही। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने 37 पैक्स चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 6 जुलाई को प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से सूची निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावा आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 23 जुलाई तक पूरी होगी। इधर पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को होने वाले उप

0: चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता भाग लेंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए पटना सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 6 से 13 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यगत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड के अनुसार 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और GST के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके

से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई पासबुक, 6 लाख से अधिक नकद और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिवहर जिला प्रशासन ने शिवहर थाना अध्यक्ष सहित जिले के 4 थानों में नए थाना अध्यक्ष पदस्थापित किए हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने नव पदस्थापित पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333A बरबीघा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण से यातायात संचालन, सड़क सुरक्षा और आम जन की परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा बिहार। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसर नपेंगे। दैनिक जागरण ने राज्य में टोल टैक्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बांकीपुर से जनसुराज के पी के खुद लड़ेंगे चुनाव, भाजपा से नीलू रेस में सबसे आगे। प्रभात खबर लिखता है, नीट जेईई में बोर्ड परीक्षा के अंकों पर मिल सकता है 50% तक वेटेज। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की होगी टीबी स्क्रीनिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

सुबह 9:30 पर सुनिएगा विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। संकलन और स्वर होगा रजनीश कुमार श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर आप लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत का आनंद लेंगे और सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग आप सुनेंगे। दिन में 11 लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे और दिन में 11:25 पर हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो रंग तरंग कार्यक्रम के लिए। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें सुनिएगा सहकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण जीविका दीदी, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गीत संगीत और भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम में शामिल होगा और आज की सूत्रधार हैं सुनीता और प्रस्तुतकर्ता है संतोष कुमार। शाम 6 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे और शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम गांव घर। इसमें चर्चा सुनिएगा वनों का हमारे जीवन में महत्व, वन महोत्सव सप्ताह 1-7 पर विशेष। लोकगीत भी आपको सुनवाए जाएंगे और वार्ता सुनिएगा, विषय होगा वृक्षारोपण आज की जरूरत। वार्ताकार राम भरत सिंह से एक जानकारी में घरों पर सोलर प्लेट लगाएं और बिजली बचाएं, इस पर भी जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार होंगे ददन प्रसाद सिन्हा, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6:40 पर सांझगीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे ई मन पसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार

चार संध्या का प्रसारण होगा। रात्रि 9 बजे लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुन पाएंगे। रात्रि 9:15 पर बंदगी में नात और मन कवत का प्रसारण होगा और रात्रि 9:30 पर पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण होगा। रात्रि 10 बजे रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम आप सुनेंगे, हिंदी एल्बम सॉन्ग इसमें सुनेंगे, कार्यक्रम होगा रसरंग। और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे।

मुस्कान फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। समीर का लिखा ये गीत था, निखिल विनय का संगीत था। श्रोताओं, आज हम आपको मुस्कान फिल्म के ही खूबसूरत गीतों को सुनवा रहे हैं, तो चलिए इसी फिल्म से सुनते हैं एक और प्यारा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की ही आवाज़ों में।

ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। संकलन और स्वर रजनीश कुमार श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे कुछ प्रतिभागियों के पास योगा के, जो तिलौथू में जिला स्तरीय योगा में हिस्सा लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरों की सुर्खियों से। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की मैककार्टनी ने लगातार सेट में दी शिकस्त, सेरेना एकल के पहले दौर से ही बाहर। बिहार की नित्या ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण, मुक्केबाजी में विश्वनाथ चंद्रिका पेश करेंगी चुनौती। मैक्सिको ने 40 साल बाद नॉकआउट में जीत का स्वाद चखा। एम्बापे के दोहरे प्रहार से स्वीडन बाहर, केसीए ने श्रीसंत पर लगा प्रतिबंध हटाया। रोहतास जिले को मिलेगा आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, रोहतास डीएम ने कहा। और अभिषेक को पछाड़ नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने ईशान किशन, और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच अनिर्णित रहा क्योंकि बारिश हो चुकी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए, लेकिन दूसरा इनिंग हो न सका। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। बिहार की नित्या ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण, बिहार की बेटी और उभरती मुक्केबाज नित्या पांडे ने राष्ट्रीय अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नित्या औरंगाबाद जिले की रहने वाली हैं। इस उपलब्धि के साथ नित्या ने न केवल बिहार बल्कि खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर औरंगाबाद का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नित्या पांडे पिछले कुछ वर्षों से खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर बॉक्सिंग औरंगाबाद में नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन तकनीक, आत्मविश्वास और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले भी नित्या अपनी प्रतिभा का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा चुकी हैं। उनका चयन अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ था, जिसमें उन्होंने उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण माना जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के DG रविंद्र शंकरण ने नित्या की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे बिहार के लिए प्रेरणादायक है। अभिषेक को पछाड़ नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने ईशान।

0: भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बुधवार को जारी आईसीसी की पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। किशन 876 रैंकिंग अंक के शीर्ष पर पहुंचने में इसी साल हुए टी20 विश्व कप में उनके अच्छे प्रदर्शन की अहम भूमिका रही है। अभिषेक 869 12 माह तक शीर्ष पर रहे। सूची में भारत के उप कप्तान तिलक वर्मा 747 छठे स्थान पर हैं। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती व जसप्रीत बुमराह क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर हैं। रोहतास जिले को मिलेगा आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, डीएम ने कहा। सासाराम स्थित जर्जर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट को अब आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को जिले के बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम दीपक कुमार मिश्रा से मुलाकात कर इंडोर कोर्ट की खराब स्थिति से अवगत कराया। खिलाड़ियों की समस्या सुनने के बाद डीएम ने कोर्ट के पुनर्निर्माण का आश्वासन देते हुए भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया है और उसकी वर्तमान स्थिति काफी जर्जर है। बताया कि वर्तमान में इंडोर परिसर में 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं। पुनर्निर्माण के दौरान मंच को हटाया जाएगा जिससे अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा और वहां तीसरा बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया जा सकेगा। इसके साथ अधिक खिलाड़ी अभ्यास करेंगे और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावना भी बढ़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया इंडोर बैडमिंटन कोर्ट तैयार होने के बाद उसका उपयोग केवल बैडमिंटन खेल और खेल गतिविधियों के लिए किया जाएगा। स्टेन वावरिंका के हार के साथ विदाई से एक अध्याय का अंत। दिग्गज खिलाड़ी स्टेन वावरिंका का विम्बलडन सफर भावुक अंदाज में हार के साथ समाप्त हो गया। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिंका को मैतिनो बेबेटिनी ने 4 घंटे 20 मिनट तक चले रोमांचक पहले दौर के मैराथन मुकाबले में उन्हें हराया। इसके साथ ही टेनिस के एक युग का अंत था। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबालेका को विम्बलडन के दूसरे दौर में ही पसीना बहाना पड़ा। उन्हें दुनिया की 97वें नंबर की लगभग अनजान खिलाड़ी ने कड़ी चुनौती दी। हालांकि सबालेका जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गई। दोस्तों, ये थी खेल गतिविधियों पर आधारित हमारी खबरें। आइए हम उन प्रतिभागियों के पास लिए चलते हैं जो अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता जो तिलोथू के राधा शांता कॉलेज में हुई वहाँ उन्होंने हिस्सा लिया था। दोस्तों, अभी मैं खेल भवन सासाराम में आया हुआ हूँ। यहाँ के योगा के बच्चे तिलोथू गए थे, वहाँ इन लोगों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थे। तो आइए हम उन प्रतिभागियों के पास आपको लिए चलते हैं जिन्होंने वहाँ मेडल्स प्राप्त किए। तो सबसे पहले मैं एक बच्ची के पास आपको लिए चलता हूँ और उसी से उसका नाम पूछूंगा। आपका नाम?
1: दीपल दृष्टि।
0: दीपल दृष्टि, अभी जो कंपटीशन हो रहा था वहाँ, वो कितने उम्र के बच्चों का हो रहा था?
1: अबव 10 और अंडर 35।
0: उसमें आप लोगों ने जो आसन किए, तो क्या वो आसन हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कौन कौन से आसन किए थे?
1: जी, सबसे पहले मैं जो आसन की थी ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर से अमित विक्रमासना और ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस में मयूरदासना 1 और मल्यासना, कैलाश आसन और वेतालासन।
0: यानी 5 आसन आपको करने होते हैं। वो जो कंपटीशन होता है आप लोगों ने जो अभी किया, उसमें पॉइंट्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में आप हमको बताएं।
1: जैसे कि हम ट्विस्टिंग किए, ट्विस्टिंग में मेन पॉइंट मिलता है कि हमारा बॉडी कितना ट्विस्ट हो रहा है। अगर हम लोग फ्लोर पे हैं तो फ्लोर को कितना टच कर रहे हैं, बॉडी कितना ट्विस्ट हो रहा है, फेस का रिएक्शन, स्माइल और आप में कितना, और कॉस्ट्यूम पे हमारे नमस्कार करने के तरीके, आने के तरीके और जाने के तरीके और अपने पोस्चर को बदलने के तरीके और पोस्चर में आने जाने के तरीके, इन तरीकों से हमें पॉइंट्स मिलते हैं योगा में।
0: और यह जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, क्या उसमें यह भी समय में निर्धारित होता है कि इतने समय तक ये आसन कब नहीं करने हैं?
1: हाँ, 15 सेकंड तक हर आसन पे होल्ड रहना रहता है। 15 सेकंड हर आसन पे होल्ड रहना है और अगर हम 15 सेकंड होल्ड रहते हैं तो उस पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं।
0: और उससे ज़्यादा समय तक भी रह सकते हैं?
1: रह तो सकते हैं लेकिन वहाँ पे टाइमिंग होता है 15 सेकंड, उतना ही होल्ड रहना रहता है।
0: तो आपने ये जो 5 आसन किए थे, उन आसनों में आपको सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा आसन लगता है?
1: इन 5 में से मुझे सबसे ज़्यादा कठिन तो कोई

0: नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे एक कैलाश आसन, ये आसन थोड़ा कठिन लगता है करने में।
1: क्या इसके बारे में आप बताएंगे हम लोगों को?
0: इस आसन में हमें अपने पैर को फैलाना रहता है और अपने बॉडी को फुली ट्विस्ट करना रहता है। एक हाथ से क्रॉस पैर को पकड़ना है, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट पैर को, और लेफ्ट हैंड को राइट पैर की ओर बेंड करना रहता है। मीन्स हमारा कमर उसमें ट्विस्ट होता है, कमर ट्विस्ट होता है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। अपनी दोनों हाथों को ट्विस्ट करके अपने दोनों पैरों के टो तक लेकर के जाना होता है। अगर ऐसा करने से हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और ये आसन 10 नंबर का आसन है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड आसन है।
1: ये नंबर क्या है? नंबर के बारे में बताइए, 10 नंबर, 8 नंबर, और नीचे 7 नंबर भी होते हैं या आगे भी कुछ नंबर्स होते हैं?
0: हाँ, 7 नंबर नहीं, 8 नंबर से आसन शुरू होते हैं। 8, 8.5, 9, 9.5 और 10। ये आसन जो होते हैं, मतलब आसन वाइज, ये कैटेगरी वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो आसन जिसमें अगर ट्विस्टिंग है, तो जितना ज़्यादा उसमें बॉडी ट्विस्ट हुआ है, जितना ज़्यादा बॉडी की उसमें मूवमेंट है, वो आसन उतने ज़्यादा पॉइंट्स का था। मेरे सारे आसन 9, 9.5 और 10 मार्क्स के थे।
1: और आपको वहां कौन सा प्राइज मिला?
0: मेरे को वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला, थर्ड।
1: आपके उम्र के जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला?
0: एक लड़की थी सर, बट उसका नाम अभी मेरे को पता नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप ब्राउन से गोल्ड की हो जाएं।
0: ठीक है, थैंक यू सर।
1: ओके, आइए अब मैं दूसरे के पास लिए चलता हूँ। आपका नाम?
2: शिवांशी स्वरा।
1: शिवांशी, आप तो बहुत छोटी हैं, ठीक है? आपने वहां जो आसन किया, क्या आपको याद है आपने कौन कौन से आसन किए थे?
2: हाँ, मल्लासना,
1: अच्छा,
2: कैलाश आसन, कोणार्क आसन,
1: अच्छा,
2: केसरी आसन।
1: और मतलब इस तरह के आसन आपने किए। आप कब से योगा सीख रही हैं?
2: 1 साल से।
1: 1 साल से? और अभी जो आप वहाँ इवेंट्स करने गई थी, उसमें आपको कौन सा प्राइज मिला?
2: ब्रॉन्ज।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि 1 साल से आप सीखने आई और आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। मेरी यह प्रार्थना है कि आप आने वाले समय में गोल्ड मेडल हासिल करें।
2: थैंक यू सर।
1: आइए दोस्तों, अब मैं एक और योगा के प्लेयर के पास आपको ले चलता हूँ, उनसे जानता हूँ उनका नाम क्या है। आपका नाम?
3: ममता कुमारी।
1: ममता, आप जो तिलौथू गई हुई थी, तो आपने जो 5 आसन किए थे वो कौन कौन से आसन थे?
3: कुर्मासना, गर्भासना और बद्ध कोणासना और एक शलभासना।
1: मैं आपसे भी वही प्रश्न पूछूंगा कि इन 5 आसनों में आपको सबसे कठिन कौन सा आसन लगता है?
3: पांचों में से हमको कठिन शलभासना लगता है।
1: शलभासना। ये कैसे करते हैं, क्या आप बताएंगे?
3: ये कमर से बैंड किया जाता है और टूडी पे, मतलब उसको होल्ड किया जाता है।
1: अच्छा।
3: हाँ, और दोनों हैंड को पीछे रखना होता है।
1: पीछे जमीन में?
3: यस सर।
1: यानी आपको हवा में बैलेंस करना होता है, इसलिए ये टफ है। आप कितने दिनों से इसको सीख रही हैं?
3: हम 3 साल से।
1: 3 साल से हो गए, ठीक। तो ये आपका पहला मेडल है या इसके पहले भी आपने बहुत सारे मेडल लाए हैं?
3: पहले लाए हैं।
1: पहले वाला भी बताइए, अभी वाला भी बताइए।
3: सेकेंड।
1: अभी?
3: अभी थर्ड लाया है।
1: अभी थर्ड लाया है। और इसके पहले?
3: सेकेंड।
1: सेकेंड यानी रजत, थर्ड यानी ब्रॉन्ज कांस्य। मेरी प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और आने वाले समय में अभी जो गोल्ड बाकी रह गया वो आपको मिले।
3: थैंक यू सर।
1: आइए अब मैं लिए चलता हूँ एक योगा के प्लेयर से जिसे गोल्ड मिला है। आपका शुभ नाम?
4: अद्विक श्रीवास्तव।
1: अद्विक जी, आप जो अभी इवेंट करने गए थे कहाँ गए थे?
4: सर, तिलौथू।
1: तिलौथू में कहाँ?
4: राधा शांता कॉलेज।
1: राधा शांता कॉलेज, वहाँ जो इवेंट्स कराए गए थे, ठीक है? आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो क्या आप हमें बताएंगे, हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि 5 जो आसन आपने किए वो कौन कौन से आसन थे?
4: सर, मैंने बैक बेंडिंग में आसन किए थे। मेरा फर्स्ट आंसर सर महिला आसन, सर सेकंड आंसर था मैं महाकार आसन, थर्ड शलभासन, फोर्थ सर महिरासन और 5 सर ट्रायंगल मुखासन।
1: ट्रायंगल?
4: ट्रायंगल मुखासन।
1: अच्छा, ट्रायंगल मुखासन, ठीक है। तो इसमें जो ये आसन पांचों थे, इसमें आपको सबसे कठिन कौन से आसन लगे?
4: सर, मुझे सबसे इसमें हार्ड लगा सर महिलासन।
1: तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कैसे करते हैं?
4: सर पहले हमें पूरे

0: पूरा अपने घुटने को सीधा करके पूरा पीछे जाना पड़ता है
1: जी।
0: और अपना एक हाथ अपने लेफ्ट वाले पैर पे पकड़ के अपने मुंडी को बाहर निकाला जाता है।
1: अच्छा।
0: उस उधर से और सर फिर उसमें फिर एक हाथ अपने पैर के पास रख के दूसरे हाथ से पकड़ के फिर से बाहर निकल जाता है सर, इसलिए मुझे वो हार्ड लगा।
1: अच्छा, ये सबसे ज़्यादा टफ। आप कितने दिनों से यहाँ सीखने आ रहे हैं?
0: सर 1.5 साल से।
1: 1.5 साल से। 1.5 साल में आप कहाँ कहाँ खेलने के लिए गए अब तक?
0: सर मेरा पहला कंपटीशन हुआ था सर स्टेट लेवल पटना में। सेकंड सर मैं नेशनल गया रांची में। थर्ड सर तिलौथू।
1: थर्ड तिलौथू। और इसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया?
0: जी सर।
1: कैसे हासिल किया?
0: प्रैक्टिस के दम पे।
1: प्रैक्टिस करके, यानी कड़ी मेहनत आपने की है, ठीक है?
0: यस सर।
1: अभी इसके बाद भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ आप लोग जाने वाले हैं?
0: यस सर।
1: कहाँ?
0: मुंगेर।
1: मुंगेर की। चलिए, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए।
0: थैंक यू सर।
1: आप भी, मैंने सुना है कि आपको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं।
0: जी सर।
1: दूसरा गोल्ड मेडल किस चीज़ में मिला?
0: सर मैं दूसरा गोल्ड मेडल आर्टिस्टिक में था।
1: ये आर्टिस्टिक क्या होता है बताएंगे?
0: सर इसमें हमें आसन करने रहते हैं डांस के साथ, म्यूजिक और डांस के साथ सर।
1: मतलब उसका तालमेल होता है, जैसे हम लोग कभी कभी कोई एक गाना सुनते हैं आदि योगी, उसमें है।
0: यस सर।
1: उसी टाइप का। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे, पांचों लोगों से, कि आप पांचों मिलके एक ऐसा गाना मुझे बताइए जो मैं आपको भी सुनाऊं और अपने श्रोताओं को भी सुनाऊं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे एक और लड़की के पास जिसने 4 मेडल हासिल किए।
2: लग जा गले, ये ओल्ड सॉन्ग है और ये गाना बहुत अच्छा है सुनने के लिए।
1: क्या इसका एक और लाइन आपको याद है? लग जा गले।
3: लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो।
1: बहुत बढ़िया। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गाना, मैं आपको भी सुनाता हूँ और अपनी श्रोताओं को भी सुनाता हूँ।

0: किए थे, क्या इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि बैक बेंडिंग क्या है और भी जो चीज़?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं। ट्रेडिशनल हमारे जिसमें हमें 4 आसन करने होते हैं, उसमें कंपलसरी हमारे 4 आसन हो गए, और देन उसके बाद हमें ऑप्शनल 3 आसन करने होते हैं जिसके बेसिस पर हमें मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो 4 आसन तो सब लोग करते हैं, और कंपलसरी जो 3 आसन होते हैं उसमें हमें खुद के चॉइस से करना होता है। लाइक कि वो आप चाहो तो 9 मार्क्स के भी कर सकते हो, 10 मार्क्स के भी कर सकते हो, आपकी जितनी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आप करो, तो देर उससे होता है। और हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया जिसमें हमें सिर्फ बैंड करना होता है, लाइक आगे की ओर हम लोग बैंड होते हैं, वो सारे आसन हो गए उसमें। और हमारा सुपाइन में होता है जो हमें पीठ के बल पर करने होते हैं, वो सारे आसन पीठ के बल पर किए जाते हैं, वो सुपाइन हो गया। और बैक बेंडिंग ऑब्वियसली सब लोग कर, मतलब यूजली ये बहुत हार्ड आसन होता है, बैक बेंडिंग और लेग बैलेंस भी बहुत हार्ड आसन होते हैं ये लोग। एक्चुअली बैक बेंडिंग में हमें पीछे की ओर झुकना होता है और अपने कमर को इतना तोड़ देना होता है, लाइक अगर आप बोल सकते हो कि एक छोटे से बॉक्स में भी घुस जाओ। अच्छा, उस तरह का होता है वो बैक बेंडिंग।
0: और अभी आर्टिस्टिक का नाम लिया था द्विक ने, वो क्या है, उसमें भी आपने किया था?
1: नहीं नहीं, उसमें मैंने नहीं किया था, आर्टिस्टिक रिदमिक मेरा नहीं था, आद्विक का था।
0: तो ये जो चारों आपने किए, इसमें सबसे मुश्किल कौन सा था?
1: मुश्किल तो सुपाइन था मेरे लिए।
0: वो कैसे करते हैं उसके बारे में बता दीजिए।
1: उसे पीठ के बल पर करना होता है, लाइक आप जो भी आसन करोगे उसे पीठ के ही बल पर करना है, वो आप पीछे की ओर मतलब सॉरी आगे की ओर लेटे रहोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बॉडी को उठाना होता है, डाउन करना होता है, उस वो आसन होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग आसन आते हैं, थोड़ा बताना मुश्किल है।
0: आप इतने दिनों से योगा कर रही हैं, अभी तक आप कहाँ कहाँ गई?
1: जी मैं फिलहाल 3 सालों से खेल रही हूँ योगा में आई हूँ, और मैंने 2 बार नेशनल खेल दिया है।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको।
1: थैंक यू। और अभी तो डिस्ट्रिक्ट ये था, देन उसके बाद स्टेट, बहुत सारे इवेंट्स हमने खेला है। और सबसे स्टार्टिंग फेज था जब मेरा हम गए थे स्टेट खेलने, वो बहुत सराहना कुछ करके था, सारण, वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग वहाँ से हुआ था, सारण से स्टार्टिंग का।
0: यानी आपने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत जगह प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया। मेरी प्रार्थना ईश्वर से है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और सबका, हर एक प्लेयर का एक विश होता है कि वो जो इंडिया का कोर्ट होता है वो मिले, और मेरी भी यही विश है कि एक बार बस इंडिया का कोट पहनना चाहती हूँ अपने ऊपर।
0: चलिए, आपके विश जरूर पूरी होगी एक न एक दिन, क्योंकि आप लोग सब मेहनत से लगे हुए हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ममता कुमारी, पायल श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, शिवांशी स्वरा, दीपल दृष्टि और आदित्य, ये लोग इस इवेंट्स में भाग लिए थे और इन लोगों ने गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल प्राप्त किए। आप भी इसी तरीके से आगे अपने किसी भी गेम में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारे यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 10:30 होने वाले हैं श्रोताओं, और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम लोकगीत का, लोक माद्री कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आइए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं एक ऐसी लड़की के पास जिसने चार चार मेडल हासिल किए हैं और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। आपका शुभ नाम?
1: पायल श्रीवास्तव।
0: पायल जी, मैंने सुना है कि आपने वहां चार चार मेडल हासिल किए, वो चारों मेडल कौन कौन से थे?
1: दो गोल्ड थे और एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर।
0: एक
1: ब्रॉन्ज और सिल्वर।
0: सिल्वर यानी दो गोल्ड, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर। ये चारों किस चीज में आपको मिले?
1: हाँ, ब्रॉन्ज तो मुझे ट्रेडिशनल में मिला था।
0: अच्छा।
1: और सिल्वर मुझे बैक बेंडिंग में मिला था और फॉरवर्ड बेंडिंग में मुझे गोल्ड और फिर देन सुपाइन में भी गोल्ड मिला था।
0: तो ये जो चारों इवेंट्स आपने

अंतराल खत्म हो चुका है श्रोताओं, और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले देवी गीत। मुन्ना सिंह की आवाज़ में दीप मोहम्मद अबादी का ये लिखा गीत है, दुर्गा प्रसाद का संगीत।

स्नेहलता की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक लोकगीत, और संगीत था सुभाष कनौजिया का। श्रोताओं, इसी के साथ भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का रसधार। कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार। गुंजन सिंह की आवाज़ में अभी आइए सुनते हैं बदरा रे ये गीत।

गुंजन सिंह और शिल्पी राज की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, सूरज सिंह का लिखा हुआ, बिक्की का संगीत था। और इसके पहले भी आपने गुंजन सिंह की आवाज़ में गीत को सुना था, रविंद्र ओझा का लिखा गीत था, शिशिर पांडे का संगीत था। आइए अब सुनते हैं भागे लखिया, आलोक कुमार और ज्योति तिवारी की आवाज़ों में अगला गीत, अशोक कुमार दीप का गीत और संगीत दोनों ही हैं।

और श्रोता, इसी के साथ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, दिन के 11 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

0: आवर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमारे फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है।

0: बर्दाश्त।
1: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
3: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस टैग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की

0: कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम
0: फिल्म है हे राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिर आए बदरा। सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन

सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है, कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं। और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने, तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमज़ोर तने वाले पेड़ हैं आसपास, तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएँ खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

0: राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे, किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफ़र में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है, और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है, झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है, और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफ़र में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें, लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहां रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला है गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। उन्हें बहु बेगम

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जा घिराए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है? बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज

आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त, वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है, संगीतकार मदन मोहन। और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन, और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां की बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं। गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा।

सरंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। आपने अपने रेडियो से सिंह के साथ
1: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा हो रही है। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माई भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माई भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की इस ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इख पदाधिकारी और जिला संपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित

0: के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 31 पर एक बालू लदा हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसोना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या की जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच 327 ई को जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वजारत पंचायती राज आज नई दिल्ली में रियासतों के पंचायती राज वजरा के कौमी वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह की सदारत में मुनक़िद वर्कशॉप में ख़ास तौर से 16वीं मालियाती कमीशन की सिफारिशों पर बहस की जा रही है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान वजारत मालियात के अखराजात महकमा के जरिए जारी 16वीं माली कमीशन के देही मकामी बल्दियात ग्रांट्स को लागू करने के रहनुमा उसूल पर बहस जारी है। महकमा यूथ प्रोग्राम ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए सनती तंजीम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। कॉन्फ्रेंस में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII समेत अहम सनती अदारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद सनती दुनिया के बहीखाहों को माय भारत सिचुएशनल मिशनरी से वाकिफ कराना और सनती तंजीम, कारपोरेट और अवामी जुमरे के अदारों को इस पहल में शामिल होने के लिए मदऊ करना था। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सनत और माय भारत के बीच तआवुन से नौजवानों की इस तवानाई को कौमी तरक्याती अहदाफ की तरफ रहनुमाई में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने आला सतही जायजा कमेटी की तश्कील की है। इस कमेटी में इक्विटी के रुकन असेंबली

0: मुरारी मोहन झा, जिला कोऑपरेटिव अफसर, जिला एग्रीकल्चर अफसर, गन्ना अफसर और जिला राप्ता आम अफसर को मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी चीनी मिल को फिर से चालू कराने की तदाबीर का जायजा लेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्ते से शुरू हो गई है। पूरे मुल्क से लाखों अकीदतमंद 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। अकीदतमंद लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई जताई है। इस दौरान तेज़ हवा के साथ बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे ज़्यादा 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना हलका के तहत NH 31 पर बालू से लदा एक हाईवा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना इलाके में कस्टमर सर्विस सेंटर से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान एक जराइम पेशा ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पांव में गोली लगी। गिरफ्तार मुलजमीन के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना हलका के तहत सिसौना गांव में पुलिस ने छापामारी करके 105 ग्राम नशीली अशिया, स्मैक और कसीर मकदार में शराब के साथ 2 जराम पेशों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर डिवीजनल जेल में बंद एक कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इब्तदाई जाँच में कैदी के जरिया खुदकुशी की जाने की बात सामने आ रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10-2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3,522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है

0: www.ssc.gov.in. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NISCL अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bfsissc.com। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज
4: सुबह
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्र

0: राष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में जिसे विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकास के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकास में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की

0: को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में

0: ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है, फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कब्बाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए, आज किस सखी से बात हो रही है? हमारी नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे मैं बॉम्बे से हूँ। आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है! तो बताइए हर्षा जी, क्या करती हैं आप?
1: देखिए, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ,
0: जी
1: मैं कविताएं लिखती हूँ, और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये
1: जी
0: उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया, तो
0: जी
1: मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल। और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, अगर फिलोसॉफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने। और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात
1: मुझे
0: करके।
1: ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए,
0: जी
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवा के पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है,
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती
0: अच्छा, मतलब आप
1: हूँ।
0: पहली
1: हाँ
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है किस तरह जाना है किस तरह आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह से
1: खुश,
0: लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती, मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: फिल्म है
0: का
1: ना।
0: जी
1: हाँ आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा
0: है?
1: हूँ
0: जी
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें,
0: पेन नेम है आपका लहरें।
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो

0: फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की, मैंने शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी।
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना, जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना, वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
0: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
1: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
0: जी, मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
1: ये बात
0: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो
1: जी,
0: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल
0: सुनाइए। और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
1: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
0: जी बिल्कुल, मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
1: जी,
0: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज़ बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज़ बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ, ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है। हाँ,
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजारते
0: के
1: हैं।
0: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम,
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा
1: हाँ,
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को,
1: नहीं कर सकती
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम। आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला माहेश्वरी, भोपाल से। जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई
1: जी
0: है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े
1: जी,
0: हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो
1: जी,
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: वाला
0: ही
1: गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है। तो चलिए सुनते हैं आप ही
1: जी
0: की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे,
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ,
0: वैष्णवी आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ,
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो-खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो
1: हाँ।
0: वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ।

0: मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
1: जी,
0: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
1: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख हाँ। और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
0: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
1: जी,
0: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं।
1: जी,
0: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
1: जी,
0: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
1: जी,
0: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
1: जी, यही हम जानना चाहते हैं और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा
0: हाँ।
1: खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप
0: हाँ।
1: को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप
0: हाँ,
1: बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
0: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
1: जी,
0: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
1: जी,
0: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
0: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से दी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल
1: कुछ
0: रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही
0: जी
1: रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ, मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी,
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

चलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 0224002462, अंग्रेजी में 02

0: 4002466 2। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हां, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहां की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अधखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी मां को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां मां बाप के लिए परेशानी का सबब होती है। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देख

घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास।

भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण की स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई

नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। भाई चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए। आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा? हर सर्जन आग की भट्टी से ही

है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए। आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा? हर सर्जन आग की भट्टी से ही, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है? सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका? प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ? आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करते रहे। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई।

बाबा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई।

बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

के समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

के समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।
2: विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हिंदी फिल्म हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:30 पर।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग का गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था। रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसमें रहने का जगह नहीं था और गरीब था।

0: उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

नैना गुप्ता के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, भारत में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए दो प्रमुख अवसर मनाए जाते हैं। पहला अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह, जो हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देशव्यापी स्तर पर मनाया जाता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसे भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही उत्साह के साथ जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। सखियों, इसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी विचारधारा का प्रचार करना, इसकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। सखियों, बिहार की जीविका दीदी बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना सहकारिता का सबसे बेहतरीन और व्यवहारिक उदाहरण है। यह लाखों ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में के रूप में जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त और उद्यमी बना रही है। सखियों, जीविका सहकारिता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जैसे कि सामूहिक शक्ति। यह आंदोलन 1.3 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल संघों के एक मजबूत नेटवर्क में जोड़ता है। सहकारी सिद्धांतों की तरह इन समूहों का प्रबंधन, निर्णय और नियम पूरी तरह से इन दीदियों द्वारा खुद लोकतांत्रिक तरीके से तय किए जाते हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता, दीदियां आपस में छोटी छोटी बचत जमा करती हैं। इस फंड से सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है, जिससे वे महाजनों के कर्ज के जाल से मुक्त होती हैं। सखियों, जीविका सहकारी संघ इनके वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया है, जो सीधे तौर पर एक सहकारी बैंक की तरह काम करता है। सखियों, दीदियां मिलकर मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प, अगरबत्ती और सिलाई कढ़ाई के बड़े सामूहिक व्यापार संभाल रही हैं। सहकारिता का मूल मंत्र एक सबके लिए, सब एक के लिए, और जीविका दीदियों ने इसे जमीन पर सच कर दिखाया है। इसने ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया, बल्कि समाज में उन्हें एक मजबूत पहचान और नेतृत्व की क्षमता भी दी है। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
4: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में हमने अभी जो गीत सुना, ये गीत मुझसे दोस्ती करोगे से लिया गया था। सखियों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी महिला शख्सियत के बारे में जिन्होंने पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में कदम रखकर इतिहास रच दिया। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं जस्टिस अन्ना चंडी के बारे में, जो भारत के कानूनी और सामाजिक इतिहास की एक ऐसी महान महिला है जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की पहली महिला जज होने का गौरव हासिल की। अन्ना चंडी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए रास्ते खोले, बल्कि वे भारत की पहली पीढ़ी की नारीवादी यानी कि फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट भी कहलाईं। सखियों, उनका जन्म 1905 में केरल के तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में हुआ था। वह अपने राज्य में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1929 में एक बैरिस्टर के रूप में अभ्यास शुरू किया और वे आपराधिक मामलों की विशेषज्ञ वकील के रूप में उभरी। उनकी दलीलों का लोहा बड़े बड़े वकील मानते थे। 9 फरवरी 1959 को वे केरल उच्च न्यायालय की जज नियुक्त हुईं। वे न केवल भारत में बल्कि पूरे राष्ट्रमंडल देशों में किसी हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थीं। वे 1967 तक इस गरिमामय पद पर रहीं। सखियों, हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन्होंने देश की सेवा जारी रखी और भारतीय विधि आयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए मलयालम भाषा की पहली महिला पत्रिका श्रीमती की स्थापना की। इन्होंने खुले मंचों से सरकारी नौकरियां में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वकालत की। साल 1973 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, जो आज भी कानून के पढ़ाई करने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सखियों, न्याय के क्षेत्र में उन्होंने जो मशाल जलाई, उसी का परिणाम था कि आगे चलकर देश को जस्टिस फातिमा बीबी जैसी पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज मिली। और इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गीत।

0: अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहां उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: सखियों, अभी हमने लता मंगेशकर और सोनू निगम की सुरीली आवाजों में गीत सुना, और अब आइए जानते हैं वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। सखियों, वृद्धा पेंशन योजना के तहत भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें देश के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित करती है, जिसमें सभी राज्यों के सरकारें अपनी अतिरिक्त वित्तीय अंशदान जोड़कर लाभार्थियों को भुगतान करती है। सखियों, बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से दो बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत पेंशन की राशि 400 से लेकर 1100 तक प्रति माह कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए यह योजना है। सखियों, महिलाएं जो बीपीएल वर्ग के अंतर्गत आती हैं, महिला किसी अन्य सरकारी स्रोत या पेंशन योजना का लाभ न ले रही हैं, उन्हें ही इसके अंतर्गत ये जो हमारा योजना चल रहा है, इसी योजना के तहत वो लाभ ले सकती हैं। सखियों, आवेदन के समय ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, ये सारे दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। सखियों, वृद्धजनों को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 60 वर्षों या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना में कोई आय सीमा या जाति बंधन नहीं है। बिहार का कोई भी वृद्ध इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और न ही किसी अन्य सरकारी स्रोत के से पेंशन ले रहा हो। सखियों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज को जन सेवा केंद्र या ब्लॉक में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करा सकते हैं। और इसी के साथ सखियों, और अब आइए अलका याग्निक, कुमार शानू और पी सुनंदा की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

सखियों, घड़ी की टिक टिक कर इशारा कर रही है कि अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

0: इसी भोजपुरी बरसाती गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।
1: और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी
2: प्रणाम ई आकाशवाणी पटना है। अब रघुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। श्री अमरनाथ जी के यात्रा आज सुख के सवेरे से जम्मू कश्मीर के पहलगाम आ बालटाल रास्ता से शुरू हो गई बा। पूरा देश से लाखन श्रद्धालु 57 दिन तक चले वाला यह तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करी हैं। श्रद्धालु करीब 3,888 मीटर के ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेवे आ प्राकृतिक रूप से बनल बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करे खातिर जालेन।

यात्रा 28 अगस्त के रक्षाबंधन के दिन खत्म हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करे के सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा दहल गईल बा। इस सुविधा 1 जुलाई से शुरू होके 6 महीना तक लागू रही। भोजपुर जिला के जवैनिया गांव में एक बार फेनु गंगा के कटाव से बेघर भइल 57 गो परिवारन के बिलौटी गांव के लगे हर एक परिवार के 3-3 दशमलव जमीन आवंटित कैल गईल बा। प्रशासन के तरफ से एकरा पहिलहुँ 70 गो परिवार के जमीन देहल गईल रहे। अभी तक ले 127 गो गंगा के कटाव से पीड़ित परिवारन के फेन से बसे खातिर जमीन देहल जा चुकल बा। एकरे साथे 40 गो परिवार के घर बनावे खातिर पीएम आवास योजना के तहत पहला किस्त के पैसा भी देहल जा चुकल बा। सीतामढ़ी पुलिस रीगा थाना इलाका में ग्राहक सेवा केंद्र में भयल लूटकांड के खुलासा करत 5 गो आरोपित के गिरफ्तार कैले बिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बेरा एगो अपराधी पुलिस पर गोली चला के भागे के कोशिश कैलस। पुलिस तुरंत जवाबी कार्रवाई कैलस जेमे बदमाश के गोर में गोली लागल बा। पकड़ल गईल बदमाशन के लगे से 2 गो देसी कट्टा, 1 गो देसी पिस्तौल, 2 गो कारतूस आ लूट में इस्तेमाल भइल 1 गो मोटरसाइकिल बरामद कैल गईल बा। वह समस्तीपुर में भी वैशाली समस्तीपुर जिला के बॉर्डर पर बलीगांव के लगे 1 गो बदमाश अमन कुमार के पुलिस एनकाउंटर में गोर में गोली लागल बा जेमे बदमाश घायल हो गईल बा। अमन अपना आउरी साथी के साथे अपराध की योजना बनावत रहे तले पुलिस के सूचना मिलल। पुलिस के पहुंचला के बाद बदमाश अमन पुलिस पर गोली चला दहलस। जवाबी कार्रवाई में अमन के गोर में गोली लागल बा। पुलिस अमन के साथे एकरा एगो दोस्त के भी पकड़ ले बिया। भागलपुर जिला के भवानीपुर थाना इलाके के NH 31 पर बालू से लदल एगो हाइबा ट्रक बेकाबू होके सड़क के अरिया बनल झुग्गी झोपड़ी वाला घर पर पलट गई। यह घटना में 2 गो बच्चा सहित 3 जने के मौत हो गई बा, जबकि 12 से अधिका लोग घायल बा। घायल लोग के बढ़िया इलाज खातिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजल गईल बा। मौसम विभाग आज प्रदेश के अधिकतर इलाका में हल्का बरखा होके के संभावना जतौले बा। ये दौरान तेज हवा चले आ ठनका गिरे के चेतावनी दहल बा। ए बीच बीतल 24 घंटा के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिका 20.2 मिलीलीटर बरखा दर्ज कैल गईल बा। मौसम विभाग के अनुसार बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण, भोजपुर और रोहतास सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में मौसम गर्म रहे के संभावना बा। कहीं कहीं हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो सकेला। सिवान के पंचबेनिया गांव में सड़क पार करे के बेरा गोड से विकलांग आदमी के अनजान गाड़ी धाका मार दहलस जेमे ओ आदमी के मौत हो गईल बा। मरे वाला आदमी पंचबेनिया गांव के हरिशंकर बैठा हुए। अररिया जिला के जोकीहाट थाना इलाका के सिसौना गांव में पुलिस छापेमारी करके 105 ग्राम स्मैक आ भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गो अपराधी के गिरफ्तार कैले बा। मुंगेर मंडल कारा में बंद एगो कैदी के संदिग्ध हालत में मौत हो गईल बा। पुलिस के शुरुआती जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या करे के बात सामने आयल बा। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना इलाका के लक्ष्मीनिया गांव में जमीन विवाद में एगो युवक के हत्या हो गईल बा। हत्या से नाराज लोग NH 327E जाम करके विरोध प्रदर्शन कई लोग। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय थाना इलाका के चकलोमान गांव से पुलिस लूट के मामला में 7 बरिस से फरार चल रहल एगो आरोपित के पुलिस गिरफ्तार कैले बिया। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दिनू भाई सब श्रोता भाई बहन के राम राम। श्रोता भाई बहन, मौसम तो सभे देख रहल बा कि कैसन हो रहल बा। इस समय है जहाँ की झमाझम वर्षा होखे, ओजा घाम ऐसन निकलता कि शरीर जले लगता। हमने के यही में कामों बा, अपना के भी बचावे के बा आ काम भी करे के बा। श्रोता भाई बहन, खेती के काम मुँह पर बा, कहीं कहीं शुरुआत भी होखे जा रहल बा। एकरा में आपन बचाव सबसे जरूरी बा, कारण कि काम तो हमने के कर ही के बा, दिन में काम करे के बा, कहीं कहीं कुछ रात गईला तक काम होला, लेकिन छाया हो गई जुड़ हो गई तब तक के बाद दूसर बा। लेकिन ए घड़ी सुबह 7 बजे से ही धूप में इतना चमक इतना गर्मी रहता कि ओकरा से बचाव अगर ना कैल जाई तो सबका खातिर दिक्कत हो जाई। श्रोता भाई बहन, घर में जे भी होके ओकरा के बचाई, अपने बची, छोट छोट बच्चा पर विशेष ध्यान दही, काहे कि छोट बच्चा रहा और कतनो रुआ डांटब बोलब, धूप में खेले खातिर निकलिए जाई। तनिको सा धूप लाग गिला के बाद कतना परेशानी उठावे के पड़ी ई हमनी के समझता नहीं जा। श्रोता भाई बहन, बरसात के मौसम शुरू हो गिल बा, ऐसना में जे घर में जेकरा भी घर में गर्भवती महिला होके ओकरा के समयानुकूल जौन टीका बा ऊ जरूर दिवाई। काहे कि ई सब टीका कई गो जानलेवा बीमारी से बचावेला। एकरा अलावे रोग हो गिला के बाद परेशानी ज्यादा होला, अगर टीका पहले से दियाइल बा तो रोग होखे के संभावना कम हो जाला। हमनी के हर हाल में अपना घर के बड़ बुजुर्ग के भी पर ख्याल विशेष रखे के चाही। अगर घर में मवेशी रख ले बनी तो ओकरा पर, अगर छोट बच्चा होके ओकर ओकरा पर भी विशेष ध्यान रखें। काहे कि ओकर सारा आवश्यकता हमनी के अपने ले समझे के पड़ेला, उ कोनो अपन आवश्यकता बता ना सके, यही से ओकनी के अनबोलता जीव कहल जाला। अपन भूख लागल रही, प्यास लागल रही, लेकिन उ कह ना सके, उ जे रख ले बा ओकरा समझे के पड़ेला। श्रोता भाई बहन, हमनी के आर्थिकी के मान ली तो रीढ़ बाड़ा सन मवेशी जे घर में रख ले बा, जिकरा भी घर में दूध उत्पादन होता ओकरा घर के आर्थिक स्थिति बढ़िया बा। तो हमनी के हर हाल में चाही कि एकरा के ऐसन बचा के रखल जाओ ताकि आगे हमनी के काम करो आ स्वस्थ रहो। जे स्वस्थ रही उ ज्यादा उत्पादन दी, एकरा में कौनो शक नहीं है। श्रोता भाई बहन, आज हमनी के कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा हुई, विषय रही वनों का हमारे जीवन में महत्व। इस समय 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह चल रहा मनावल जा रहा बा। एकरा बाद सुधा सिन्हा के गावल लोकगीत सुनल जाई। वृक्षारोपण आज की जरूरत विषय पर राम भरत सिंह के वार्ता भी सुनल जाई। आज एक जानकारी के विषय बा, घरों पर सोलर प्लेट लगाएं और बिजली बचाएं। आ अंत में कुछ सलाह के साथे साथे मौसम पूर्वानुमान पर भी एक नज़र डालल जाए। श्रोता भाई बहन, ई रहल कार्यक्रम के रूपरेखा। तो जैसन कि हम कहनी हाँ, वन महोत्सव सप्ताह मनावल जा रहल बा आ हमनी के भी चर्चा के विषय बा वनों का हमारे जीवन में महत्व। देखी वन शब्द के सुनते का बुझाला, वन शब्द जब कान में पड़ेला वही घड़ी एगो क्षेत्र विशेष के नक्शा दिमाग में उभरेला, जौन की बहुत सारा पेड़ से पेड़ होखे जहाँ छाया होखे, हर तरह के कोई कोनो कोनो जीव

भी ओह वन में रहलन। श्रोता भाई बहिन, घर के आसपास पेड़ रहला, ओकरा के एगो पेड़ बा तो पेड़ कहाला, लेकिन उहे पेड़ वन में रही आ बहुत सारा संख्या में रही तो वन कहे लगी। आज हमनी के जितना तेजी से वन के विनाश कर रहल बनी जा तो उ दिन दूर नहीं खे जब हमनी के पछताए के पड़ी, सांस लेबे खातिर शुद्ध हवा ना मिली। श्रोता भाई बहिन, आज मौसम के उतार चढ़ाव जवन देखे के मिल रहल बा, एकर कारण भी उहे बा। हमनी के तनिको नहीं जा समझत कि वन के कटाई के का दुष्परिणाम हो सकेला। आदमी अपना आवश्यकता खातिर इतना अंधा बा कि राते दिन कोनो जरूरत के सामान लौकता तो सोचता कि कतना जल्दी एकरा के ओरवा दही। वन के कटाई वही तरह हो रहल बा, नदी से बालू के ढुलाई वही तरह हो रहल बा, पेड़ से पत्थर के कटाई वही तरह हो रहल बा। अगर यही तरह रही तो आवे वाला समय में ये सब चीज के नामो निशान मिट जाई। श्रोता भाई बहन, हमनी का देख रहल बनी जा कि प्रति वर्ष गर्मी बढ़ रहल बा आ प्रति वर्ष जंगल भी घट रहल बा, वन भी घट रहल बा। तो का ऐसा नहीं है कि जितना जितने तेजी से वन कटता उतने तेजी से गर्मी बढ़ता। आज सरकार के भी ध्यान यहाँ पर लागल बा आइल बा आ सरकार भी चाह रहल बा कि वन के क्षेत्रफल बढ़ो, हरित आवरण के क्षेत्र बढ़ो। तो ये कैसे बढ़ी जब तक हमने के एकरा बारे में ना सोचब जा, पेड़ ना लगाइब जा आ लगैबे भर ना करब जा, एकर सेवा भी करब जा। श्रोता भाई बहन, जैसे अपना घर के छोट छोट बच्चा के आदमी पाल पोस के बड़ करेला, वही तरह पेड़ पौधा के भी अगर छोट बच्चा लौकेला, छोट पौधा लौकेला तो आदमी कहेला जरूर कि ज़्यादा धूप में मत रखिए नहीं तो सुखा जाए। तो हमनी के जैसे अपना बच्चा के पाल पोस के बड़ा कर दनी जा, वही तरह एगो पेड़ के पौधा के भी पाल पोस के जब बड़ा कर दनी जा तो जितना एगो पुरुष अपना जीवन में कमाई ओकरा से तनिको कम ना कम के ऑक्सीजन उ पेड़ ना दही। पेड़ का हो बरसात आवता तो देखी, पेड़ की कटाई रोकी, वर्षा के वर्षा बढ़ाई। श्रोता भाई बहन, आज पेड़ लगावे की जरूरत बा। खेत होखे, घर होखे, घर के आगे जगह होखे, ओह में भी पेड़ लगा सकीला, पौधा लगा सकीला। अगर कुछ नहीं खे तो छत पर चार गो गमला भी रख के अगर पौधा लगाई आ ओकरा में से फूल जब खिली तो देह के राउर मन जरूर खिल जाए। श्रोता भाई बहन, पेड़ हमनी के जितना जहरीला गैस अपना सांस ले छोड़ता नहीं जा, पृथ्वी के हर जीव उ सारा जहरीला हवा हवा के सोख लेता आ ओकरा बदला में जीवनदायिनी हवा दे रहल बा। श्रोता भाई बहन, ए धरती पर जे भी जीव बा ओकरा सांस लेबे खातिर हवा के आवश्यकता बा, शुद्ध हवा के आवश्यकता बा। हमनी के ए मुहिम में आगे बढ़े के पेड़ लगावल जाओ आ ओकरा के पाल पोस के बड़ा कर जाओ, ताकि अगर जौन हवा उ दीही, गैस दीही, ऑक्सीजन गैस दीही उ तो कोई ना देखी, लेकिन फल दीही तवन तो जरूर लौकी। आज हमनी के बाजार में आम के फसल, आम के फल जितना बिकता जितना लौकता कौन ची के देन बा, पेड़ पौधा लगावे के देन बा। आज लोग के झुकाव पेड़ पौधा लगावे पर बढ़ल बा। आदमी के तनिको सा जगह बा तो आदमी सोचता कि एगो पौधा लगा दही, तनिका देखे में तो निमन लगी। श्रोता भाई बहन, अब आई हमनी का एगो लोकगीत सुनल जाओ। आज हमनी का लोकगीत सुनल जाई सुधा सिन्हा से, तो सुने के।

श्रोता भाई बहन, अभी हमने के सुधा सिन्हा से ही लोकगीत सुननी जा, बड़ा निमन लगल। इतना निमन लोकगीत सुनौला खातिर सुधा सिन्हा के धन्यवाद। देखी आज बात होता पेड़ पौधा के, वन महोत्सव सप्ताह भी चल रहा बा, तो हमनी के

श्रोता भाई बहन, अभी हमनी के सुधा सिन्हा से ही लोकगीत सुननी जा, बड़ा निमन लगल। इतना निमन लोकगीत सुनौला खातिर सुधा सिन्हा के धन्यवाद। देखी आज बात होता है पेड़ पौधा के, वन महोत्सव सप्ताह भी चल रहा बा, तो हमनी के एक बाज वार्ता सुनल जाओ राम भरत सिंह से। यहाँ के बता रहा बनी कि वृक्षारोपण आज की जरूरत, तो सुने के

श्रोताओं, वृक्षों के समूह को वन, उपवन, जंगल कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। वृक्षों को प्रकृति के राजकुमार और वनों, उपवनों या जंगलों को उनकी जन्मभूमि कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में वृक्षों के समूह से ही वन बनते हैं और वन प्रकृति के जीवनदायक सौंदर्य का साकार रूप हुआ करते हैं। वृक्ष और वन हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, छाया, लकड़ी, हवा आदि तो देते ही हैं, जिसे हम प्राणवायु या जीवनदायिनी शक्ति कहते हैं। उसका स्रोत भी वास्तव में वन और वृक्ष ही हैं। इतना ही नहीं, धरती और उस पर स्थित अनेक रंग रूपों वाली सृष्टि का आज तक जो संतुलन बना हुआ है, उसका मूल मंत्र भी वन और वृक्ष ही हैं। धरती पर लगे कल कारखाने या अन्य प्रकार के तत्व जो अनेक प्रकार के प्रदूषित तत्व, गंदी हवाएं, दम घोंटू गैसें या इसी प्रकार के अन्य विषैले तत्व उगलते रहते हैं, समस्त मानव जीवन और प्राणी जगत की उन सबसे रक्षा भी निश्चय ही वन और वृक्ष ही कर रहे हैं। उनका अभाव सर्वनाश का कारण बन सकता है। श्रोताओं, संसार में आदि अनादि काल से ही वृक्षों को उसकी महत्ता के कारण पूजा जाता है। वृक्षों को प्राचीन ग्रंथों में मानव के पुत्र समान बताया गया है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि इसके लगाने से मानसिक तनाव या कष्ट दूर होते हैं। जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। भारत में माना जाता है कि विभिन्न वृक्षों में भिन्न भिन्न देवता, नाग, अप्सरा, परी आदि का वास होता है। हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हरे वृक्ष का अंग भंग करना या जड़ से काटना पाप समझा जाता है। अतः मानव के सच्चे दोस्त वृक्ष ही हैं। वृक्ष निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा मानव को देता है, हमको देता है। श्रोताओं, वनों वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। अतः वृक्षारोपण आज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए अन्न, जल की व्यवस्था, सांस ले पाने का सुप्रबंध भी वन वृक्ष ही करते हैं। वर्षा का कारण ये वन वृक्ष ही हैं कि जिससे धरती हरियाली प्रदान कर अन्न जल का उत्पादन कर हमारा भरण पोषण करता है। सोचिए, यदि वर्षा न हो तो एक दिन सारी नदियाँ, कुएँ और पानी के अन्न स्रोत सूख जाएंगे, धरती बंजर और फिर धीरे धीरे धूल राख का ढेर बनकर रह जाएंगी। स्पष्ट है कि वन और वृक्षों का अस्तित्व धरती और इस पर रहने वाले प्राणी जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इनका

भाव जो स्थिति पैदा कर सकता है उसकी कल्पना भी संभव नहीं। श्रोताओं, वनों वृक्षों का महत्व जानते समझते हुए भी आज हम कुछ पैसों के लोभ के लिए उन्हें काट कर जलाते, बेचते या अन्य प्रयोग करते हैं। इससे नदियों, पर्वतों आदि का संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, प्रकृति और सारे जीवन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। नतीजा प्रदूषण का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। गीले पर्वतों और जल स्रोतों के आसपास उगे वनों वृक्षों को काट डालने का ही वह परिणाम है। अब बाढ़ों का प्रकोप कहीं अधिक झेलना पड़ता है। समय पर वर्षा नहीं होती, जिससे सूखे के थपेड़े सहने पड़ते हैं। वन वृक्ष अवश्य काटने और उनकी लकड़ी हमारे उपयोग के लिए ही हैं, पर हमारा यह भी तो कर्तव्य बन जाता है कि यदि एक वृक्ष काटते हैं तो उसके स्थान पर एक अन्य उगाएं भी। परंतु हम तो वनों को मैदानों और बस्तियों के रूप में बदलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चल सकेगा? निश्चय ही अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। इस बात को आज के ज्ञानी विज्ञानी मानव ने अच्छी प्रकार समझ लिया है, तभी तो आज न केवल हमारे देश बल्कि विश्व के सभी देशों में वृक्ष लगाने की प्रक्रिया वन महोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी है। पेड़ उगा वनों को फिर से लगा कर हम उन पर नहीं बल्कि अपने पर ही कृपा करेंगे, अपनी भावी सुरक्षा की योजना ही बनाएंगे। श्रोताओं, भारत में वनों वृक्षों की कटाई अंधाधुंध हुई है, फलतः प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसे जान लेने के बाद ही आज हमारे देश में प्रगति और विकास के लिए सरकारी या संस्थागत रूप में जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, वृक्ष उगाना और वन संवर्धन भी उनमें से एक प्रमुख कार्य है। प्रायः हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्षों के पौधे रोपे जाते हैं, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि पौधा रोपण के बाद हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, रोपित पौधा का ध्यान नहीं रखते। उसे या तो आवारा जानवर चर जाते हैं या पानी के अभाव में सूख मुरझा कर समाप्त हो जाते हैं। यदि सचमुच हम चाहते हैं कि मानव जाति और उसके अस्तित्व की आधार स्थली धरती प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो हमें काटे जा रहे पेड़ों के अनुपात से कहीं अधिक पेड़ उगाने होंगे। अनावश्यक वन कटाव कठोरता से रोकना होगा। इसके लिए मानवीय रक्षा और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का अन्य कोई चारा या उपाय नहीं है, सिवाय वृक्षारोपण का। श्रोताओं, इस प्रकार वृक्षारोपण या वन महोत्सव का महत्व स्पष्ट है। हमने सार्थक रूप से वन महोत्सव आज इसलिए मना और उसके साथ जुड़ी भावनाओं का साकार करना चाह रहे हैं, ताकि मानव जीवन भविष्य में भी हमेशा आनंद उत्सव मना सकने के योग बना रह सके। वह स्वयं ही घूंट कर दम तोड़ने को बाध्य न हो जाए, सजग सरकार

0: तैयार रहकर फल फूल सके। इस तरह मानव जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम की मनोहारिणी छटा दर्शन मात्र वृक्षारोपण कार्य से ही संभव है।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
3: श्रोता भाई बहन, बड़ा बढ़िया वार्ता हमनी के सुननी है जा राम भरत सिंह से। यहाँ के बतौनी है कि आज वृक्षारोपण के का जरूरत बा। इतना बढ़िया वार्ता सुनला खातिर यहाँ के धन्यवाद दे देवे के। आ अब एक जानकारी के विषय में चले के, जहाँ की आज के विषय बा घर पर अपना सोलर प्लेट लगाई आ बिजली बचाई। श्रोता भाई बहन, कोनो भी ऊर्जा के क्षेत्र में देखी तो जैसे बुझाता है कि दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो रहा बा डीजल के, वही तरह पेट्रोल के भी वही तरह दाम बढ़ रहा बा। यहाँ तक कि घरे घरे बिजली चलता लेकिन बिजली के बिल चुकावे में आदमी के हालत खराब हो जाता। ऐसा में सरकार एगो योजना लेके आई बा कि अपना घर पर सोलर प्लेट लगाई आ बिजली बचाई। सोलर प्लेट अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत लगावल जा रहा बा। अक्षय ऊर्जा स्रोत भगवान सूर्य हवन आ सूर्य के रोशनी के कबो क्षय ना हुई। सूर्य के रोशनी से सोलर प्लेट आदमी चार्ज करके अपना घर के बिजली के कम 70% आवश्यकता के पूर्ति कर सकेला। एकरा में सरकार अनुदान भी दे रहा बा, तो हमनी के एकर फायदा उठावल जाओ, अपना घर पर सोलर प्लेट लगा के आगे के रास्ता नीमन बनावल जाओ। आ अब कुछ सलाह जान लिहल जाओ। श्रोता भाई बहन, खेती करे खातिर सबसे जरूरी होला पहले माटी के, माने खेत के माटी के, कौना खेत के माटी कैसन बा, कौना खेत में कौन फसल बढ़िया हुई, ये सब जाने के पड़ेला। तो एकरा खातिर जाँच करावे के पड़ेला, मिट्टी जाँच जरूर कराई। उचास जमीन में अरहर के बुआई खेत खातिर खेत तैयार करें, आसमान साफ रहे पर ही बुआई करें। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 आ राजेंद्र अरहर 2 किस्म के बुआई 60 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर के दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम स्फुर आ 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग जरूर करें। अरहर के अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। अगर बागवानी लगौले बनी घर अपना बाग में, भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ लौकी के फसल में निराई गुड़ाई आ खर पतवार नियंत्रण करे के समय बा। पत्ती खाए वाला सुंडी आ फल छेदक कीट के नियमित निगरानी करी। प्रकोप लौके अगर तो डाइमेथोएट 30 EC के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के आसमान साफ रहे तो छिड़काव कर सकेला। आ अब मौसम के पूर्वानुमान जानल जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि 4 से 8 जुलाई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले आ हल्का से मध्यम वर्षा होके के अनुमान बा। जिला के 1 चाहे 2 स्थान पर भारी वर्षा होके के भी संभावना बा। तापमान 35-36 डिग्री अधिकतम आ न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% आ दोपहर में 25 से 30%

रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। श्रोता भाई बहन, अब घड़ी कह रहा बा कि कार्यक्रम के समय उड़ा रहा बा, तो अब दिनू भाई के आज्ञा दही चले चले गए बरी सब श्रोता भाई बहन के राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

अभी आप सुन रहे थे सांझ गीत कार्यक्रम में आवत हुई हैं सांवरिया फिल्म का ये गीत। आवाज़ चंद्राणी मुखर्जी की थी। उमाकांत तिवारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी दिलीप दत्ता ने। और अब आइए हम आपको सुनवाएं जिंदगी है गाड़ी सैया ड्राइवर बीवी खलासी। ये उस फिल्म का नाम है जिस फिल्म का गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रियदर्शन पाठक ने।

सुरेश वाडेकर और साधना सरगम को सुनने के बाद श्रोता दोस्तों आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ों में रेजा फिल्म का एक गीत। अरविंद तिवारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमन श्लोक।

श्रोता दोस्तों, आप सबने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। उदित नारायण और पामेला जैन को सुनने के बाद अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में विराज तड़ीपार फिल्म का एक गीत। प्रेम सागर सिंह हैं गीतकार और संगीतकार हैं छोटे बाबा।

गंगा जमुना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ें थी। अनुपमा सिंह के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शिवम बागची ने। और अब आइए सुनते हैं प्रीतिया तोहार फिल्म का एक गीत। मोहम्मद अजीज और नंदिता की आवाज़ें हैं। सुधाकर शर्मा हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजन गुरुजी।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोता दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में और आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्थानीय गतिविधियों से। कल दिनांक 2/7/2026 को जिलाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़कों की वर्तमान स्थिति, उनके रखरखाव, मरम्मत कार्यों तथा यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि अपने अपने कार्यक्षेत्र की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें तथा जहां कहीं भी छोटे या बड़े गड्ढे पाए जाएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब भरने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रमगंज क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर जल्द ही भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से हाई रिस्ट्रिक्शन बैरियर लगाए जाएंगे। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा तथा ग्रामीण सड़कों को क्षति पहुंचाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनुरक्षित सभी सड़कों की अद्यतन सूची शीघ्र वे उपलब्ध कराएं। सूची के आधार पर सड़कों की स्थिति का समुचित आकलन कर आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क मरम्मत एवं रख रखाव कार्यों के नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा प्रगति रिपोर्ट समय समय पर उपलब्ध कराई जाए।

रंग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी।

अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत 2,76,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों को आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हडको के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता हुआ है। पटना के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शहरी विकास के इतिहास में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 3,00,000 एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे और किसानों को लैंड पुलिंग के माध्यम से इस परियोजना का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास और विश्व स्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्याडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 29 नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लिए सिकंदरपुर, हथुआ, फारबिसगंज, लोहट, बरियारपुर और फतुहा समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 38 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन समेत अन्य औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही 3,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की भी संभावना है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमिटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इक पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर हाट विकसित होने से ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे जीविका दीदियों और किसानों की आय बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाट विकसित करने, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने तथा महिलाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार 20 जुलाई से 1100 श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा का आयोजन करेगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष

0: पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा। श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के बाद 26 जुलाई को पटना लौटेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और पालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल जसीडी झाझा किहुल शेखपुरा अस्थावा बिहार शरीफ नालंदा और राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। केंद्र सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उधर समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित पंगरा थाना क्षेत्र के बलेगांव के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन कुमार को पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने सहरसा जिले के सलखुआ थाना में पदस्थापित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि मौके से एक

0: दलाल को भी गिरफ्तार किया गया।
1: ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है, जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है, ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर केस दर्ज कर करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसके सांठगांठ में काम करने वाले 10 ऐसे IO जिनकी फाइल मिली है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करके लाइन हाजिर किया गया है। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनको कठोरतम सजा हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे।
0: भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हाईवा ट्रक और नियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के पास ई रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक और एक बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 265 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित कदम ताल और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय और पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में गंगा के कटाव से प्रभावित 57 परिवारों को बिलौटी गांव के पास 3-3 डिसमिल भूमि का आवंटन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कुल 127 गंगा कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही 40 पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिले के तलसिंहसराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर

0: रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
2: पूर्ण टीकाकरण अभियान में कटिहार जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की HMIS रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 87% टीकाकरण कवरेज के साथ राज्य के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मनसाही प्रखंड ने 126% उपलब्धि के साथ जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि बारसोई ने 102 और आजमनगर ने 101% उपलब्धि दर्ज की है।
3: कटिहार जिले ने टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से जो 3 ब्लॉक है मनसाही, बारसोई और आजमनगर, उन लोगों ने विशेष अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अपने लक्ष्य जो ELA होता है उससे भी ज्यादा लोगों का इन्होंने टीकाकरण किया है, तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं ही लोगों को समुचित तरीके से मिले, यही हम लोग का प्रयास है।
2: जिले के PM श्री विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बालिकाओं को अब केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। जिले के 23 PM श्री विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
4: कटिहार जिला अंतर्गत 23 PM श्री विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष भत्ता देने का इस शैक्षिक सत्र से प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने PM श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूची बनाने का निर्देश दिया है।
2: जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही मरगाहा में गंगा किनारे कराए गए कटावरोधी कार्य का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त एप्रोन का पुनर्स्थापन करा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
3: विभाग स्तर से एक विशेष टीम गठित करवा रहे हैं, जो सारे बिंदुओं पर, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो चाहे जैसे इश्यूज हो, विभाग स्तर की एक टीम, उच्च स्तरीय टीम आकर के इसकी जाँच करेगी और उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 450 से अधिक सरकारी कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें समाहरणालय, विकास भवन, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ICDS और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानांतरण निर्धारित मानकों और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।
3: लगभग 450 के आसपास कर्मियों का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है और जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, ICDS के, पंचायत के लोगों का किया गया है ट्रांसफर, और इसमें जिला स्तर पे अलग अलग की रैंकिंग कराई और उसके बाद उस रैंकिंग के आधार पर उनसे प्रेफरेंस लेकर ट्रांसफर किया गया है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
2: कटिहार बारसोई रेलखंड के अंतर्गत कटिहार सोनौली और कटिहार कुरेठा के बीच लगभग 30 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा सफल हाई स्पीड निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नारा ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5: ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है, दो प्रोजेक्ट है, टोटल 64 किलोमीटर का है और इसका कंप्लीशन टारगेट रखा हुआ है कि इसी साल का दिसंबर तक, हो सकता थोड़ा बहुत मतलब एक्सटेंड होगा लेकिन टारगेट जो है वो मतलब इस साल का ही है। अभी कुल 30 किलोमीटर 50% हो गया है।
2: राज्य सरकार के निर्देश पर गरवेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं कला एवं संस्कृति और खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत थीम के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान

0: ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना। संगीत का कार्यक्रम

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मन पसंद।

तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं सुरों की इस महफिल, जिसे आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं ई मन पसंद। सुरों की महफिल सजी है, नगमों का कारवां आया है, दिल की हर धड़कन को छूने फिल्मी गीतों का पैगाम आया है। हर धुन में एक कहानी है, हर गीत में एक अरमान, संगीत जोड़ देता है दिलों को, यही इसकी पहचान। तो आइए सुरों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

संगम फिल्म का ये गीत अभी आप सुनना चाहते थे। कहाँ से मेल और कौन श्रोता हैं जो इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद हैं, ये हम आप तक पहुंचा दें। लेकिन आपका नाम, आपकी जगह हम आप तक पहुंचाएं, इससे पहले थोड़ी सी आपसे गुप्तगू कर लें कि कभी कभी श्रोता दोस्तों आपकी पसंद के गीत शामिल नहीं होने का कारण ये भी होता है कि उपलब्धता की कमी हो, और भरसक प्रयास यही होता है कि अगर आपका गीत उपलब्ध है तो ज़रूर उसे चलाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी उपलब्ध हो तो नाम तो कम से कम आपका ले लेते हैं यार, क्योंकि इतने मेहनत से जो आप समय निकाल कर हमें मेल करते हैं तो आपका हक बनता है, इसलिए आपका नाम तो ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते थे गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। और नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। और इसी गीत को सुनना चाहते थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाहकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरहेकर,

दोस्तों, ये 5 मिनट 10 सेकंड का ये नगमा है। इसे 5 मिनट 10 सेकंड पूरा पूरा हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन जानते हैं बस गाने का सार यही होगा। 2 पंक्तियों में हम आप तक पहुंचा देते हैं, बस यही कि जुल्फों की छांव मिली तो ज़िंदगी महक उठी, जुल्फों की छांव मिली तो ज़िंदगी महक उठी, हर दर्द शाम जैसे खुद ब खुद ढल गई।

अब आइए तपस्या फिल्म का हम आपको गीत सुनवाएं, पसंद आप सबों की है। मेताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, शिक्षिका तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफात जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से आफैनी कहत प्रवीण, सदफ आरजू और सादिया तस्नीम।

तपस्या फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते थे। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। और अब आइए सुनते हैं आन बान फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री।

मेरे हम सफर खूबसूरत जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूब

चेहरे पे गुस्सा है, चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत है, चेहरे पे गुस्सा मगर

तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ग्राम खरवत्स नोखा। यहाँ से हमारे श्रोता दोस्तों के नाम हैं मोती माला, बीरा सिंह, सुनील राय, कृष्णा और चुन्नू सिंह। आप सबों की पसंद है अभिमान फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

इस गीत को सुनना चाहते हैं पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, राकेश कुमार, शिवा लोहट, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। और आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी इसी गाने को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं।

इस गीत के लिए मेल आया है वडिंगा खेड़ा पंजाब से। इसे भेजने वाले हमारे श्रोता दोस्तों के नाम हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा।

और दोस्तों, सफर के इस पड़ाव पर हमारी मुलाकात हो रही है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत ग्वाहणकर राही श्रीमती सरिता ग्वाहणकर, प्रणीता सिद्धांत ग्वाहणकर, अर्जुन ग्वाहणकर टुक टुक जी से। और इनकी पसंद है खुदगर्ज फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते हैं निसार कमाल, मिराज, साकिब, आलिया, पंकज कुमार और इनके ढेर सारे दोस्त। आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से, पार्थ रेडियो क्लब से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

महफिल भी सजी है, दिल भी बेकरार है, यादों की राहों में आज फिर किसी का इंतज़ार है। हर धड़कन बस एक ही नाम पुकारती है, मोहब्बत की हर धुन उसी पर निसार है। दोस्तों, जब दिल की आवाज़ अल्फाज से आगे निकल जाती है, तब गीत बनकर हर एहसास गुनगुनाता है। आइए उसी प्यार, उसी इंतज़ार और उसी अपनापन को समर्पित एक खूबसूरत गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

इस खूबसूरत गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू।

और अब आइए अब सुनते हैं 10 नंबरी फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, गांव फारांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, और पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर से आप हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से आप हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके ढेर सारे दोस्त। तो लीजिए आप तमाम हमारे श्रोताओं के साथ सुनिए अपनी पसंद का 10 नंबरी फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रेशमी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला जिला गाजीपुर से आप हैं, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

अब आइए सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का एक गीत। पसंद आप सबों की है। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

इस गीत को सुनना चाहते हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता।

सौतन फिल्म का ये गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल।

और आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे।

0: कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। और अब इसी के साथ ई मनपसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty।
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा

0: पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
0: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: तीस्ता इश्यू।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने

0: पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र

0: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। समय मिलाइए, रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का, माफ कीजिएगा, भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनोरंजन ओझा को। अब आइए सुनते हैं सोनू सुरेंद्र प्रसाद की आवाज़ में ये लोकगीत।

इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बंदगी। श्रोता दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नात से, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये नात।

नबी से वली तक एल्बम का ये नात अभी आप सुन रहे थे जरीना बानो की आवाज़ में। और अब आइए जरीना बानो की आवाज़ में सुनते हैं एक मनकवत।

इसी मन का वत के साथ बंदगी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रसारित रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
2: और इस कार्य में हम आपकी सहायता करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। श्रोताओं, आज के संपादकीय में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी, बुद्धू का कांटा, जिसके रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक प्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार थे। उनकी कहानी उसने कहा था कि चर्चा हमने पहले भी की है, परंतु आज हम उनकी एक अन्य कथा आपके साथ साझा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यदि साहित्यिक विशेषता की बात करें तो सर्वप्रथम उनके केंद्र का विषय अत्यंत भावुक और कल्पना से परे होता है। वे घटनाओं को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे कोई चित्रकार अपनी कलम लेकर एक एक भाव को महीनता से कागज पर उकेर रहा हो। पाठकों की व्याकुलता ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे वो कोई रुकावट देखना सुनना चाहते ही नहीं। वे कहानी के साथ साथ सबको लेकर चलने लगते हैं। हर पाठक उन

ये विचारों से अपने विचारों को मिलाने के प्रयास में लग जाता है। भाषा इतनी सरल प्रयोग करते हैं कि हर कोई उन्हें पढ़ना पसंद करता है। कहानी में उनके व्यंग्यात्मक प्रयोग पाठकों को जकड़ लेते हैं। भला ऐसे कहानीकार को उनकी रचनाओं को कोई सुनने और पढ़ने से कैसे रोक पाएगा? तो आइए सुनते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानी का सारांश रूप। सर्वप्रथम कहानी के शीर्षक की चर्चा होनी चाहिए। गुलेरी जी ने एक निर्जीव वस्तु को जो अपना देह त्याग चुकी है उसे इस कहानी के केंद्र में रखा है। भला कोई कांटों को भी अपने स्मरण में स्थान देना चाहेगा? परंतु यह गुलेरी जी की रचनाशीलता है कि उन्होंने उस तिरस्कृत वस्तु को भी किसी के मिलन का द्योतक बना दिया। कहानी मुख्य रूप से केंद्रित है रघुनाथ और शारदा पे। रघुनाथ एक 25 वर्ष का युवक है जो अत्यंत अनुशासित है, समय पे अपना हर कार्य करता है, दोस्तों की भीड़ नहीं परंतु अच्छे दोस्त बना रखे हैं, अध्ययन में अपना समय अधिक व्यतीत करता है, एक उद्यान में हर दिन जाता है। परंतु एक दिन उसका उद्यान में जाना उसके लिए विशेष बन जाएगा ये उसे भी नहीं पता था। हर दिन की भांति रघुनाथ उद्यान जाकर अपनी पुस्तकों में रमा होता है, परंतु अचानक उसे किसी के कराहने के स्वर सुनाई देते हैं। उस स्वर में व्याकुलता, छटपटाहट और पीड़ा के भाव मिश्रित थे। रघुनाथ उस स्वर को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। वह देखता है एक युवती दर्द से कराह रही है, उसके पैर में कांटे चुभे हैं। रघुनाथ उसकी सहायता करना चाहता है, परंतु पुरुष होकर स्त्री की सहायता करने में संकोच करता है। शारदा दर्द से व्याकुल है, पैर में चुभे कांटों को निकालने का प्रयत्न भी कर रही है पर वह विफल हो जा रही है। रघुनाथ से शारदा की व्याकुलता देखी नहीं जाती, अतः वह मर्यादा का ध्यान रखते हुए शारदा से कांटों को निकालने की अनुमति लेता है। शारदा की अनुमति के उपरांत वो उस कांटे को निकाल देता है। यह उन दोनों की भेंट का पहला अवसर बनता है और वो कांटा पहला कारण। एक दूसरे से औपचारिक बात कर वे अपने अपने मार्ग चल पड़ते हैं। समय बीतता है, अब वो उद्यान रघुनाथ को शारदा की और शारदा को रघुनाथ का स्मरण कराती है। दोनों ही इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि एक बार पुनः वे एक दूसरे को देख सकें, और वो एक दिन आ जाता है। रघुनाथ और शारदा धीरे धीरे एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं। दोनों के हृदय में प्रेम और मर्यादित सम्मान के भाव जागृत होते हैं, परंतु इस भाव को कोई भी अपने मुख से व्यक्त नहीं करता। यह मौन प्रेम उन्हें और मजबूत डोर में बांधता है। बातों बातों में अनायास शारदा कहती है उसके पिता के स्थानांतरण की बातें चल रही हैं, यदि ऐसा हुआ तो वे दूसरे शहर चली जाएगी। रघुनाथ ये सब सुनता है परंतु अपने प्रेम को भी व्यक्त नहीं कर पाता। एक दिन शारदा कहती है कि पिता के स्थानांतरण के कारण वो अब दूसरे शहर जा रही है और रघुनाथ को भेंट स्वरूप एक डिब्बे में वही कांटा भेंट कर देती है जो उनके मिलने का कारण बना था। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के स्मरण में डूबे रहते हैं। एक दिन रघुनाथ की माँ उस डिब्बे में पड़े कांटे को देखती है और रघुनाथ से उस कांटे के बारे में प्रश्न करती है। रघुनाथ उसे किसी के स्मरण की बात कहकर टाल देता है। 5 वर्ष हो जाते हैं शारदा और रघुनाथ को एक दूसरे से मिले हुए, फिर भी वे एक दूसरे से परे किसी और को नहीं सोच पाते। एक बार कार्यालय के काम से रघुनाथ उसी शहर पहुंचता है जहां शारदा रहती है। एक पुस्तकालय में वो फिर से मिलते हैं। दोनों ही एक दूसरे के वैवाहिक जीवन से जुड़े प्रश्न करते हैं और उत्तर सुन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों का विवाह होता है और विवाहोपरांत रघुनाथ शारदा को वही कांटा भेंट करता है जो उन्हें इस वैवाहिक बंधन में बांधता है। श्रोता, ये कहानी एक साधारण सी प्रेम कहानी प्रतीत होती है, परंतु यहाँ क्षण भर में संबंध बदल जाते हैं। छोटी सी दूरी लोगों को दूर कर देती है, वहां ये कहानी इन सब परेशानियों और परीक्षाओं को विफल कर देती है। एक कांटा भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही परिकल्पना हो सकती है। संपादकीय के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं विनोद कुमार सिन्हा अपनी कहानी एक बार फिर।

और अंततः न्यायालय ने काफी जद्दोजहद और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह मान लिया कि यह संबंध अब आगे चलने वाला नहीं और तलाक के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। कभी अग्नि के साथ फेरे लेकर वैवाहिक सूत्र में बंधे शिशिर और मृदुला मात्र 2 वर्ष से भी कम समय में अलग हो जाएंगे किसी ने सोचा भी न होगा। कचहरी से बाहर निकल दोनों की नजरें एक दूसरे से एक बार मिली और फिर दोनों अपने अपने परिजनों के साथ 2 पृथक दिशाओं में चल दिए। घर पहुंचने के बाद इस प्रक्रम पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन मृदुला बिल्कुल गुमसुम थी। हाँ, उसका अंतर्मन कुछ ज्यादा ही अशांत था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई और हठात पलंग पर लेट गई। वो अपने आप को अभी सहज नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चूक कहाँ हो गई जो ये बालू की भीत सदृश दाम्पत्य संबंध भर भराकर गिर पड़ा। किसी चलचित्र की तरह तमाम घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। आज बरबस उसे निखिल की याद हो आई थी। निखिल उसका पहला प्यार था जो जैसे जान देता था उस पर। आज भी वो पल उसे भुलाए नहीं भूलता जब खून की जांच कराने हेतु वह एक पैथोलॉजिकल क्लिनिक में बैठी थी। डॉक्टर ने खून का नमूना लेने के लिए उसके हाथ में सुई चूहोई नहीं कि सामने बैठे एक अजनबी युवक के मुख से सिसकारी निकल गई। मृदुला ने नजरें उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा उठी। युवक झिप गया। वो युवक कोई और नहीं, निखिल था। निखिल से यही उसकी पहली मुलाकात थी। क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद औपचारिक बातचीत में निखिल मृदुला की सहेली सुरभि का बड़ा भाई निकला, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। मृदुला उन दिनों बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए कि दोनों एक दूसरे के करीब बहुत करीब आते गए। इस मेलजोल ने कब प्यार का रूप ले लिया कुछ पता न चला, लेकिन जब शादी की बात चली दोनों ही के परिवार में जैसे भूचाल आ गया। कारण, दोनों आपस में सौजातीय नहीं थे। बस मृदुला के पंख कुतरने के लिए उसके पुलिस अधिकारी पिता ने आनन फानन में बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहे शिशिर के साथ उसकी शादी तय कर दी। उस दिन खूब रोई थी वो, खूब आरजू मिन्नतें की थी, लेकिन उसके कड़क प्रवृत्ति के पिता ने एक न सुनी और अंततः इसे नियति का खेल समझ मृदुला ने समझौता कर लिया। इसकी अतिरिक्त वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, तथा कथित लोकलाज का डर जो था। मृदुला ब्याह कर ससुराल चली आई थी, एक ऐसे परिवार में जो पूरी तरह रूढ़िवादी था, जहां तरह तरह की बंदिशें थीं, ये करना है वो नहीं करना है। उसके पिता ने सोचा होगा, बेटी का कन्यादान कर उन्होंने गंगा नहा लिया और उनकी तथाकथित आन बान और शान भी रह गई, लेकिन ये जरा भी नहीं सोचा कि बेटी के उन तमाम सपनों अरमानों का क्या होगा जो उसने बचपन से अपने मन में संजोए थे। खूब पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने, अपने पांव पर खड़े होने के सपने, एक ऐसे जीवन साथी पाने के सपने जिसके सानिध्य में वो जिंदगी की तमाम ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन मृदुला के लिए अब सब कुछ एक ख्वाब था और लंबी घूंघट के अंदर अपनी नियति पर आंसू बहाने के सिवाय वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पति के कमाऊ नहीं होने का नतीजा था। छोटे मोटे खर्च के लिए भी वो सास ससुर पर निर्भर थी और इसीलिए अभी हाथ की मेहंदी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी कि चारों ओर से जैसे आदेश और निर्देश की बौछारें होने लगी। बहू ये करो, बहू वो करो। बिना किसी को कोई जवाब दिए चुपचाप वह रात दिन घर के कामों में लगी रहती। फिर भी बात बात पर डांट भी सुननी ही पड़ जाती थी। इसी बीच शिशिर का रिजल्ट क्या खराब हुआ, उसका ठीकरा भी उसी के सर मढ़ा गया। बहू का पांव ही ठीक नहीं। सासू माँ ने बस साफ शब्दों में कह दिया, अब हम नहीं चला सकते तुम्हारी गृहस्थी। बहुत कमाए होंगे पिताजी ने तुम्हारे, अपने खर्च के लिए भी हर महीने रुपये मंगा लिया करो। उस दिन पहली बार कुछ सहमे स्वर में मृदुला ने अपनी इच्छा जताई थी। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपकी अनुमति हो तो कोई नौकरी का प्रयास करूँ। लेकिन सासू माँ के एक ही जवाब ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये कोई बात हुई क्या, इस घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती, समझी। सुनकर खून के घूंट पीकर रह गई थी मृदुला। इस लगातार शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव ने उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। उसका दहकता सौंदर्य मध्यम पड़ने लगा। एक दिन अकस्मात मृदुला के पिता उससे मिलने को आ गए। संयोगवश उस वक्त वह घर के फर्श पर पोछे लगा रही थी। झट हाथ धोकर अपने हालात को भरसक छिपाती वो पिता के पास आ खड़ी हुई, लेकिन पिता ने सब कुछ भांप लिया। कहा, तू तो बिल्कुल आधी हो गई रे बिटिया, ये कहाँ ब्याह दिया तुझे मैंने बेटी। कहकर पिता ने जैसे ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे आंखों से गंगा जमुना बह चला मृदुला के। मुझे अपने साथ ले चलिए बाबूजी। बाप बेटी की बातें सासू माँ की कानों में पड़ी और वे तिलमिला उठी। टेसियो तो ऐसे बहा रही है जैसे हम

0: सास ससुर नहीं इसके दुश्मन हो। अब नाराज ना होइए समधन जी, बिटिया ने तो कुछ कहा भी नहीं। मृदुला के पिता ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप उछाल रहे हैं हमारी इज्जत। घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती। कहाँ से रखे नौकर चाकर, इसके पति की पढ़ाई में मोटी रकम भी तो भेजनी पड़ती है। ऐसा ही था तो ब्याहते अपनी बेटी को किसी राजा महाराजा के घर, तमतमाई सी बोली मृदुला की सासू माँ। अधमरा तो कर दिया आप सबों ने, मेरी बेटी अब एक पल नहीं रुक सकती इस हालत में। अब लौटेगी तभी जब इसका पति कमाने लगेगा, मृदुला के पिता का जवाब था। सुनते ही भड़क उठे मृदुला के ससुर, बेशक ले जाइए, हम रोकेंगे भी नहीं आपकी बेटी को। और मृदुला चली आई थी पिता के साथ वापस मैके में। पिता को अपनी भूल का एहसास हो आया था, उन्हें लगा इस हालात के लिए वे ही दोषी हैं। बस क्या था, उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया। तमाम उत्पीड़नों से बेटी की मुक्ति के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ले ली, जैसे शादी नहीं गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। कुछ महिला संगठनों ने भी हवा दी मामले को। उसके बाद तो न्यायिक प्रक्रियाओं का लंबा दौर चढ़ा, जिसकी परिणति मृदुला और शिशिर के तलाक के रूप में हुई। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से अपनी पीठ थपथपाने लगे थे। उनकी झूठी शान का सवाल जो था, किसी ने भी इसके दुर्गामी परिणाम की नहीं सोची। यह मामला अखबारों में इतना उछाला गया कि दोनों ही परिवारों में वैवाहिक संबंध से लोग कतराने लगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो बीतता ही जाता है। देखते देखते 3-4 वर्ष से अधिक बीत गए, मृदुला अपनी एकाकी जिंदगी से ऊबने लगी। यही कारण था कि अखबार में एक कंपनी में प्रोजेक्ट ऑफिसर की नौकरी का विज्ञापन देख उसने भी आवेदन कर दिया। पैसों के लिए कम, वक्त काटने के लिए ज्यादा। साक्षात्कार के लिए प्रबंध निदेशक के कमरे में प्रवेश करते ही वो चौंक उठी थी। सामने बैठा व्यक्ति निखिल था। फिर तो दोनों ने अपने अपने अतीत को साझा किया। निखिल ने बताया मृदुला की शादी के बाद तो वो टूट ही चुका था, लेकिन कालांतर में उसकी भी अन्यत्र शादी हो गई और आज उसकी एक बेटी भी थी। दूसरी ओर मृदुला की कहानी सुन निखिल ने एक लंबी सांस ली। कैसी विडंबना है मृदुला, दो परिवारों ने महज अपनी जिद के कारण अपने ही बच्चों का बसा बसाया आशियाना उजाड़ दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, अब तुम आ गई हो तो मेरे साथ काम करो। आज से तुम इस कंपनी की प्रोजेक्ट ऑफिसर हो। इस नौकरी से मृदुला को बड़ा बल मिला था। बड़ी लगन से वो अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया, उससे कंपनी में शीघ्र ही उसकी एक अलग पहचान बनी। एक दिन शाम में छुट्टी के वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मृदुला कार्यालय के बरामदे में खड़ी होकर बारिश रोकने का इंतजार कर रही थी, तभी निखिल पीछे से आकर बगल में खड़ा हो गया। कहते हैं शाम की बारिश और शाम के मेहमान जल्द जाते नहीं, आपकी इजाजत हो तो अपनी गाड़ी में आपको घर छोड़ दूं। मृदुला थोड़ा मुस्कुराई और निखिल की गाड़ी में बैठ गई। घर के पास गाड़ी रुकते ही सड़क के पार एक पेड़ के नीचे तेज बारिश के पानी से बुरी तरह लथपथ एक युवक को देख मृदुला ने निखिल को इशारा किया। लगता है शिशिर है, लेकिन ये यहाँ देखते हैं, कहकर निखिल गाड़ी से नीचे उतरा और शिशिर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे मृदुला भी साथ हो ली। शिशिर जैसे ठंड से कांप रहा था। मृदुला की ओर हसरत भरी नजरों से देखते हुए किसी तरह उसने कहा, मृदुला तुमसे दूर होने के बाद तुम्हारी बड़ी याद आई, लेकिन कमाता नहीं था ना, इसलिए लाचार था। आज मैं एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, सोचकर आया था तुम्हें एक बार फिर से मना लूँगा, लेकिन लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। मृदुला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर वहाँ से जाने लगी कि निखिल ने रोका उसे। रुको मृदुला, तुम दोनों के बीच परस्पर संवादहीनता के कारण ही दूरियाँ बढ़ती गईं और अंततः जो हश्र हुआ वो हम देख रहे हैं। शिशिर जी को बताओ, हम दोनों सिर्फ एक कंपनी में सहकर्मी हैं और अच्छे मित्र भी, इससे अधिक कुछ नहीं। और हाँ, मैंने पाया है शादी और तलाक दोनों ही मामलों में तुम दोनों की कोई सहमति नहीं थी, बल्कि अभिभावकों ने ही दुर्भाग्यवश दोनों मामले थोपे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, शिशिर जी खुद चलकर यहाँ आए हैं, इन्हें रोक लो वरना बहुत देर हो जाएगी। मृदुला लगभग भागती सी गाड़ी में से अपना शॉल निकाल लाई और ढक दिया शिशिर के कांपते जिस्म को। निखिल के चेहरे पर संतोष की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने नदी के दो किनारों को मिलाने के लिए सेतु का काम जो किया था आज।
1: बहुत ही सुंदर कहानी अभी हमने सुनी विनोद कुमार सिन्हा के द्वारा। फूलों के समान संबंध कोमल होते हैं, यदि उन्हें बल लगाकर पकड़ने का प्रयास किया जाए तो वे या तो टूट जाते हैं या मुरझा जाते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इस कहानी के बाद आइए अब सुनते हैं सुमन कुमार मिश्र से उनकी कुछ कविताएं।

शीर्षक है गम भी छोटा रखते हैं। हम हैं छोटे लोग, हम औकात न आका करते हैं, होती हमारी खुशियाँ छोटी गम भी छोटा रखते हैं। कोई घर को रोशन करने में जी जान लगाया करता है, हम मिट्टी के छोटे दीपों से तंदूर भगाया करते हैं। किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं, किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं, संतोष है बारिश से बचने को हम भी छाता रखते हैं। चलने जिनको आए नहीं वो मैराथन का हिस्सा बनते, चलने जिनको आए नहीं वो मैराथन का हिस्सा बनते, सच है कि अभी सीख रहा पर हम भी हिम्मत रखते हैं। नदियाँ गहरी हो या माझी साथ निभाने से कतराए, नदियाँ गहरी हो या माझी साथ निभाने से कतराए, मत कहना ये बात किसी से हम भी हुनर रखते हैं। उनका ओहदा तारीफ उनकी, उनका ओहदा तारीफ उनकी, अपना कोई वजूद नहीं, फिर पूछो क्यों मुझसे अक्सर बचे बचे ओ रहते हैं। मोल जोल की बात नहीं सबका भाव अलग अलग है, मोल जोल की बात नहीं सबका भाव अलग अलग है, मैं बिक जाऊं बेमोल भले ही पर कुछ तो कीमत रखते हैं। मन का भाव मन में लेकर एक पायदान ही चढ़ते हैं, छोटी छोटी खुशियां हम रोज इकट्ठे करते हैं, रोज इकट्ठे करते हैं। अगली कविता का शीर्षक है हम सुख से वंचित होते गए, अभाव से दूरियां बढ़ती गई, हम सुख से वंचित होते गए, जितने साधन किए इकट्ठे मन से बोझिल होते गए। अभाव से दूरियां बढ़ती गई, हम सुख से वंचित होते गए, जितने साधन किए इकट्ठे मन से बोझिल होते गए, हम बिसरे बचपन की बातें समय से अक्सर लड़ने में, कभी नापे विरित बतासे का मन का द्वंद सुलझाने में, गुलगुल्ले तोड़ कर बाँटे हम दोस्ती दुरुस्त बनाने में, समय की उल्टी बयार बही पराधीन हम होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। वे क्षण कितने सुखदाई थे, वे क्षण कितने सुखदाई थे, न मान अपमान की चिंता थी, चाह थी छोटी खुशियों की, नुक्कड़ के खेल तमाशों की, हम हर्षित पुलकित होते थे मिश्री के छोटे ढेलों से, हम हर्षित पुलकित होते थे मिश्री के छोटे ढेलों से, चाह हमारी बढ़ती गई हम स्वाद से वंचित होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। जब उड़ने का साहस नहीं था हम में, जब उड़ने का साहस नहीं था हम में, सारा आकाश हमारा था, अब साहस साधन संसाधन है तो अंबर की भी सीमा है, हम विकसित होने का भ्रम पाले, हम विकसित होने का भ्रम पाले, मन से मूर्छित होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। अगली कविता का शीर्षक है साझा करना बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में नज़र मिलाना बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में नज़र मिलाना बहुत कठिन है, मन की बातें मन में रहती साझा करना बहुत कठिन है, पाले मन में द्वेष बहुत दूर, पाले मन में द्वेष बहुत दूर, सफर नहीं संभव है, गाल फुलाना और मुस्काना संग संग दोनों बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में नज़र मिलाना बहुत कठिन है, कर न सके जो सबल स्वयं को दुख पीड़ा से प्रेरित होकर, कर न सके जो सबल स्वयं को दुख पीड़ा से प्रेरित होकर, सुख की बातें बेईमानी है खाए बिना निरंतर ठोकर, परजीवी बन जीवन जीना, परजीवी बन जीवन जीना, भाग्य भरोसे बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में नज़र मिलाना बहुत कठिन है, जीवन का सूरज असमय अस्त हो, जीवन का सूरज असमय अस्त हो, मार्ग अगर न दीप प्रशस्त हो, तम का तंबू तना देखकर घोर चिंतन में जीव समस्त हो, जुगनू के बल अंधेरों में कदम बढ़ाना बहुत कठिन है, मिले नहीं जो मन आपस में नज़र मिलाना बहुत कठिन है। अगली कविता का शीर्षक है उड़ने की बातें बाद में करना, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ।

जमाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, खुली आंख मत देखो सपने, कर्म प्रधान बन पाओ तो। इनकी उनकी बात बहुत बेमानी मुलाकात बहुत, जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी होगे, जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी होगे। अगर भरे न खाई परस्पर, आपस का प्रेम बढ़ाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। सहज नहीं जीवन सुख मिलता, कौन भला अब किसकी सुनता। दबेगी जितनी पीड़ हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे। दबेगी जितनी पीड़ हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे। भटक भटक कर राह न ढूंढो, भटक भटक कर राह न ढूंढो, अपनी राह बनाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। अज्ञान है इतना बढ़ा तुम्हारा, तुलना कर लेते ईश्वर से। सोच संकुचित रखने वालों, क्यों करते भगवान की बातें। बनना हो इंसान मुकम्मल, पहले ठोकर खाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। जब भी होंगे कर्म उपेक्षित, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। कोसोगे किस्मत को अपनी, जीवन भर पछताओगे। मंजिल की बातें बाद में करना, पथ पर चल दिखलाओ तो। उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। अगली कविता का शीर्षक है सर्कस। हारे हुए हर मानव के जीवन में एक आस है सर्कस। हारे हुए हर मानव के जीवन में एक आस है सर्कस। अंधेरों के बीच में जैसे सूरज का प्रकाश है सर्कस। पैसा ले कर्तव्य दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सर्कस। पैसा लेकर तब दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सर्कस। संगठन को परिभाषित कर परिवारों का परिवार है सर्कस। सबकी अपनी मर्यादा, अनुशासन की मिसाल है सर्कस। एक ही तंबू के नीचे एक अद्भुत संसार है सर्कस। हाथी घोड़ा बंदर भालू, शेर संग गुलजार है सर्कस। हाथी घोड़ा बंदर भालू, शेर संग गुलजार है सर्कस। मौत के आगे खड़ा हमेशा, खुद पर दृढ़ विश्वास है सर्कस। सबकी जाति धर्म अलग, पर संबंधों की मिठास है सर्कस। सुख दुख में सब साथ निरंतर, भावों का एहसास है सर्कस। बच्चे बूढ़े सकल जनों के चेहरे की मुस्कान है सर्कस। कहीं नहीं जो ठहर पाए, बस उसका एक मुकाम है सर्कस। बंजारोसा जीवन में सत्य का सदा सत्कार है सर्कस। बंजारोसा जीवन में सत्य का सदा सत्कार है सर्कस। बांटे पर कभी घटे नहीं, खुशियों का विस्तार है सर्कस। झूठ नहीं दर्शक के आगे, वास्तविकता का अभ्यास है सर्कस। प्रदर्शन में संतुष्टि का एक अद्भुत प्रयास है सर्कस। अगली कविता का शीर्षक है अमन चैन का बादल बनकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। सूरज रोज सुबह में आए, अपने संग में लाली लेकर। धरती पर हरियाली लेकर, गाँव में खुशहाली लेकर। तुम भी आओ हिम शिखर से, निर्मल शीतल वारी लेकर। बरसों मेरे गाँव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। उगते बीजों का राज तुम ही हो, उगते बीजों का राज तुम ही हो। पल पल जीवन का राज तुम ही हो। खिलते फूलों का आस है तुझ पर, कृषकों का विश्वास है तुझ पर। आओ मेरे गांव में आओ, सागर की लहरों से उठकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। तुझ पर आश्रित भूमंडल यह, आओ न आओ तेरी इच्छा। पर व्याकुल मन है आस में तेरे, आओ सुखदाई अमृत लेकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। पपिया बैठा ताक में तेरे, खोले मुख सिप नदी किनारे। पपिया बैठा ताक में तेरे, खोले मुख सिप नदी किनारे।
मेढक।

0: तटर मल्हार सुनाए, नाचे मोर हो भाव विभोर। उमरत गरजत आओ घन आओ, उमरत गरजत आओ घन आओ। पीर हरो पीर पातक बनकर, बरसो मेरे गांव में जलधर। अमन चैन का बादल बनकर, अमन चैन का बादल बनकर। अगली कविता का शीर्षक है घर नहीं बन पाएगा। ऊंचे ऊंचे महल बना लो, घर नहीं बन पाएगा। ऊंचे ऊंचे महल बना लो, घर नहीं बन पाएगा। जब तक उसमें खुशियां न हो, घर नहीं कहलाएगा। लाख जोर लो ईंट और पत्थर, संगमरमर की दीवार बना लो। लाख जोर लो ईंट और पत्थर, संगमरमर की दीवार बना लो। जोड़ सको न दिल से दिल को, सुख चैन नहीं आएगा। घर नहीं बन पाएगा। दिल से दिल को बांट दिए और कटे कटे से रहते हो। दिल से दिल को बांट दिए और कटे कटे से रहते हो। भाईचारा और प्रेम नहीं जहां, उसको घर क्यों कहते हो। वो तो है बस चार दीवारी, वो तो है बस चार दीवारी। घर नहीं कहलाएगा, घर नहीं बन पाएगा। निज स्वार्थ में अंधे हो गए, निज स्वार्थ में अंधे हो गए। पहन लिए अभिमान के चश्मे, भूल गए सब रिश्ते नाते। भूल गए सब अपने पराए, जीवन सफल बनाने हेतु आशीष नहीं मिल पाएगा। घर नहीं बन पाएगा। संग संग चलने का मर्म न जाना, संग संग चलने का मर्म न जाना। अटूट प्रेम का धर्म न जाना, कटे पंख के बल पर नभ में उड़ने की कोशिश करते हो। संग संग चलने का मर्म न जाना, अटूट प्रेम का धर्म न जाना। कटे पंख के बल पर नभ में उड़ने की कोशिश करते हो। चांद को धरती पर लाने का दिवा स्वप्न रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा।
1: बहुत ही सुंदर कविताएं अभी हम सुन रहे थे सुमन कुमार मिश्र से। इन्हीं कविताओं के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले एक आग्रह, यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

आंखों में सपने लिए एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जसविंदर नरूला की आवाज़ थी, वी विजय के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी नीलू निरंजन ने। और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं आओ विश करें एल्बम का एक गीत। सुनिधि चौहान की आवाज़ है, अनूर तिवारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं खुद अनूर तिवारी।

आओ इस करें एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुनने के बाद। अब आइए हम लोग सुनते हैं अब के बरस एल्बम का एक गीत। आवाज़ सुनीता राव की है, श्याम अनुरागी हैं गीतकार और आनंद राज हैं संगीतकार।

अबीदा एल्बम के इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आज आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते। कुछ रिश्ते दस्तक देकर नहीं आते, वे चुपके से दिल में उतर जाते हैं। न कोई आहट, न कोई शोर, बस धड़कनों की हर धुन में अपना नाम लिख जाते हैं। दोस्तों, जब कोई अपने एहसासों से दिल की दुनिया को रोशन कर दे तो हर पल एक खूबसूरत याद बन जाता है। ऐसे ही अनकहे प्यार और मासूम जज्बातों को बयां करता है ये प्यारा सा गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं यह दिलकश नगमा और खो जाते हैं इसकी मीठी धुनों में।

मुझसे दोस्ती करोगे। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। सोनू निगम और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राहुल देव, राहुल शर्मा ने। और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का एक गीत। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: सावन का महीना
0: पवन करे शोर।
1: पवन
0: अरे
1: करे शोर
0: बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

दोस्तों, रिश्ते तो ज़िंदगी में कई बनते हैं, मगर दोस्ती वो एहसास है जो हर गम को मुस्कान में बदल देती है ना? जिसे सच्चा दोस्त मिल जाए, समझिए उसे ज़िंदगी का सबसे अनमोल खजाना मिल गया। तभी तो किसी ने कहा है कि दोस्ती की खुशबू कभी पुरानी नहीं होती, सच्चे दोस्तों की कहानी कभी अधूरी नहीं होती, दूरियां चाहे जितनी भी हो, दोस्तों की धड़कन कभी कम नहीं होती। श्रोता दोस्तों, आज का जो गीत हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, सभी दोस्तों के नाम है जो हर खुशी में साथ हंसे, हर मुश्किल में कंधा बनकर खड़े रहें। दोस्ती की उसी खूबसूरत भावना को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला सदाबहार गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। दोस्तों, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर दिल में नई भावनाएं जगा देते हैं। प्यार, अपनापन और सच्चे समर्पण का एहसास कराने वाला ऐसा ही एक गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले चंद पंक्तियां भी हम आप तक पहुंचा दें। मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं पड़ता, मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं पड़ता, सच्चे दिल का रिश्ता कभी अधूरा नहीं रहता। जो हर पल किसी की खुशियों की दुआ करे, ईमान से उसका प्यार ही दुनिया में सबसे अनमोल कहलाता है। और अब दिल को छू लेने वाला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आइए सुनते हैं।

इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

कल प्रातः एक बार फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे 5:53 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हिंदी समाचार सुबह 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रातः 6:05 पर। आपके पत्रों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी प्रस्तुत करेंगे हम 8:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:45 पर सुबह कल, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका हम प्रस्तुत करेंगे 9:10 पर। कल 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। हिंदी समाचार पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। समय होगा पूर्वाह्न 10:05। 10:30 पर सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर

0: भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार की प्रस्तुति होगी। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन युवाणी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कार्यक्रम किसान वाणी की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। गुड इवनिंग रोहतास, ये कार्यक्रम रोज की तरह कल भी हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र। समय होगा शाम 7:25। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से शाम 7:50 पर हम प्रस्तुत करेंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मन पसंद। लोकधारा कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम रात्रि 9:15 पर। सजेगी गजल की महफिल और रसरंग हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर

0: कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।